0: जाता है, ज्ञान भूल जाता है। भक्ति का पथ ही है बस ऐसा पथ, जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: समस्त भागवत धर्मन ऊपर निकुंज माधुरी श्री युगल चंद जो विलास करत हैं, जिन यह समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे ते आप ते जाई अंतर परे निसंदेह। अब यहाँ रस के उपासक को, रसोपासक को, साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि सभी से ये चर्चा करनी उचित नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जिन यह रस समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे तो आपते जाए, यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके हृदय में जो रसानुभूति है वही समाप्त हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अंतर परे निस्संदेह, और समाप्त नहीं होगी तो कह रहे शिथिल तो अवश्य पड़ जाएगी। पूर्व भी आपसे चर्चा हुई इस विषय पर, भजन को छिपाना ही भजन को बचाना है, भजन का गोपन। और अनधिकारी के सामने तो बिल्कुल भी ना कहा जाए। अच्छा, बहुत लोग मैंने ऐसे देखा वो खींच तान कर सबको लगाने का यहाँ प्रयास करते हैं, पर ऐसा संभव होता नहीं है भाई। जीव का कल्याण केवल केवल केवल ईश्वर के अनुग्रह से होता है। आप और मैं यहाँ बैठे हैं, ये आपका मेरा प्रयास नहीं है, ये आप पर और मुझ पर प्रभु की कृपा है। ये प्रभु की कृपा के प्रसाद से आप और मैं यहाँ पर बैठे। ताते मौन होए रहनो बहुत भलो है। सब जगह प्रवचन उपदेश की आवश्यकता नहीं है, है ना। ध्रुवदास जी कह रहे आवश्यकता से भी कम बोलने वाला वस्तुतः साधक है। डोंगरे जी महाराज तो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है, आवश्यकता पड़ने पर भी आवश्यकता से कम, कहते हैं जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है वो सदा मौन रहता है। समझिए, वो सदा मौन में ही है, वो वाणी का तप कर रहा है। ये वाणी का तप है, आपको खबर भी नहीं है आप अपनी कितनी शक्ति अनर्गल बोल कर गंवाते हैं। तो फिर कहते हैं विजाति सुमिल वो भलो नाही। विजाति माने जो आपके रस के अनुकूल ना हो। अच्छा, एक और बात यहां मैं छोटी सी है पर कहना चाहूंगा, ये अच्छा है या बुरा इस वाद और विवाद में भी मत पड़िए। किसी के लिए ये घोषणा भी मत करिए कि अच्छा है या बुरा, हमारे अनुकूल नहीं है, बस इतना पर्याप्त है। अच्छे और बुरे के प्रपंच में पढ़ना भी ठीक नहीं है। जो आपके लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा होगा, होगा निश्चित रूप से होगा भाई। ऐसा ही रचा है रचने वाले ने संसार। जो आपके लिए बुरा है ना वो किसी के लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए अच्छा है वो किसी के लिए अरुचिकर होगा। तो मैं कहता हूं अच्छे और बुरे के इस वाद में भी मत पड़िए। दूरम उपाय है, जो आपके अनुकूल ना हो बस मौन होकर वहां से दूर हो जाइए। वो आपके लिए नहीं है, बस वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। और अनुपयोगी की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौन रहकर उससे दूरी बना लेना ये बुद्धिमानी है। मौन हो जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। बिन सजाती सुमिल बात ना चलावे। जब तक कोई अपने भाव के अनुकूल हृदय ना मिले तब तक चर्चा ना की जाए। इस रस की तो कदापि ना की जाए। सेवक जी महाराज कहते रसिकन सो प्रीतम कहे। रसिक हृदय के सन्मुख अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जैसो जाको भाव है तैसी सिद्धि होए, ताते औरन सो प्रयोजन नाही। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, जैसे जिसकी भावना है। कबीर सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। राम झरोखे बैठ के

अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कहते तहां बखानो है तोए बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। अभी तो अपना ही कार्य नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पहले आत्म कल्याण कर ले,

खुल जाता है, खुल जाता है भाई। यही भगवान की माया का प्राबल्य है। आपको अपने छोटे से अनुभव से कहूं, माया का प्राबल्य क्या है कि वो अनुचित को अनुचित लगने ही नहीं देती। यही तो माया है। जो है सो दिसत नहीं, जो दिसत सुनाई। आपको लगेगा कि उचित है वो अनुचित होगा, और आप उचित समझकर बस करते चले जाएंगे। यही भगवान की माया है। वो हित और अहित का, उचित और अनुचित का, सत और असत का जो भेद है वो आपकी दृष्टि के सामने प्रकट ही नहीं होने देती। और माया क्या है? यही तो है। संसार अपना लगता है, प्रभु दूसरे लगते, यही तो माया है और क्या है। बार बार साधु आपसे कहता है, संत आपसे कहता है, गुरुजन आपसे कहते हैं, कहां समझ में आती? यही भगवान की माया है। पाए रतन चीनो नहीं, दीनों करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो कहते हैं, आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाण, अपनो रस लिए रहे और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। और यहां मैं फिर कहूंगा, भगवान ने नवदा भक्ति के उपदेश में बल देकर ये बात कही है कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। एक और बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं आपसे, साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है उतनी और किसी भी वृत्ति से नहीं होती। पर दोष दर्शन ही है जो साधक के मन चित्त को कलुषित कर देता है, भजन के अनुकूल नहीं रहने देता। इससे बचने का तो भाई भरसक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या, ऐसा तो करना ही है। यही बात अपने और अंतर में रखिए, ऐसा तो करना ही है। ये और भजन साथ साथ नहीं रह सकते। आप में दोष दृष्टि ना हो। सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। श्री व्यास जी के वचन, व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संग तज यह भक्त की रीत। व्यास जी कह रहे, बिना कुछ निंदा स्तुति के प्रपंच में पड़े, जो अनुकूल ना हो दूर हो जाइए, जो अनुकूल हो उसका संग करिए, यही विवेक है। तो विवेकी कहा, अब विवेक बताते हैं क्या है। विवेकी तासो कही है, जो भली गहे बुरी छाणे। अविवेकी बोले, भली बरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। अब आज तो संसार में ही रमे हैं हम, जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया, अगले दिन वृंदावन आ गए, बोले अब वृंदावन में ही रहेंगे। और इत व्यवहार न उत परमारथ, और बीच ही बीच जन्म गमायो। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन कर देता हूं, भाई जहां हो वहीं से मार्ग बनाना आरंभ करो, अपने हृदय को पात्र बनाना आरंभ करो। विश्वास रखो, जिस दिन आप पात्र हो जाओगे, प्रकृति एक क्षण भी आपको वस्तु से वंचित नहीं रखेगी, क्योंकि ये द्वार तो कभी बंद हुआ ही नहीं, खुला ही है। जीव विमुख है, ठाकुर जी तो सदा सन्मुख है, जीव विमुख है।

वो भी आवश्यक है। बस इसी प्रकार आगे बढ़िए। तो कह रहे अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। इसी को मैं कुछ देर पहले संतुलन कह रहा था, जैसे ही अनुपात बिगड़ेगा वैसे ही स्वाद बिगड़ेगा। आप दाल रोटी भी बनाते हो, दाल में भी नमक का अनुपात बिगड़ जाए स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं? ऐसे ही जीवन है, इसमें प्रत्येक वस्तु का एक अनुपात है। अनुपात में रहेगी वस्तु तो आपको जीवन का स्वाद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा एक और बात, व्यर्थ यहां पर कुछ भी नहीं है, निरर्थक यहां पर कुछ नहीं है भाई, सबकी उपयोगिता है। इसीलिए मैंने कहा कब लेना है, क्या लेना है और कितना लेना है, ये सीख लीजिए। आपको कब लेना है, क्या आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तुएं भी आपके लिए नहीं होंगी भाई। एक वस्तु किसी के लिए गुणकारी होती है, वही वस्तु किसी के शरीर को हानि पहुंचा देती है। अपनी अपनी प्रकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कितना लेना है। यहां पर आकर व्यक्ति अपने अंतर मन को दूषित कर बैठता है, वो आवश्यकता से अधिक चाहता है। और आवश्यकता से अधिक तो भाई जल भी पी लो तो वो आपको रोगी कर देगा। एक तरफ कहते हैं जल ही जीवन है, पर आवश्यकता से अधिक तो जल भी पी लिया जाए तो आपको रोगी बना देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। जीवन की आवश्यकता निर्धारित करनी चाहिए शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। फिर कहते हैं ताते सजाती सो मिल, बात जुगल विहार की करे बिचारे, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे, बिजाती को परस सुना करे। जो अपने भाव के अनुकूल हैं, जो अपने भाव के साधक हैं और जो आपके भाव के ही सिद्ध जन हैं, शुद्ध जन हैं, रविदास जी कह रहे हैं उनका संग करे, उनके संग बैठकर प्रियालाल की चर्चा करे, वार्ता करे, चिंतन करे, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे, बिजाती को परस सुना करे। और जो अपने भाव से साम्य नहीं रखता, जिसके हृदय में आपके जैसा भाव नहीं है, बोले उसका तो संग त्याज्य ही है, भरसक प्रयास करना चाहिए ऐसे संग से दूर रहने का। और वृंदावन चंद एक प्रीति ही माने, कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो, पर उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हमारे प्रिया लाल को न तो किसी व्रत उपवास से कोई लेना देना है, ना अपरस सपरस से, वो तो एक प्रीति माने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कुछ भी करो, विविध भांति व्यंजन करो, पर लौन बिना सब फीक। प्रेम ही इष्ट है भाई, प्रेम ही आराध्य है, प्रेम ही प्राप्य तत्व है। अब जब ध्रुवदास जी ने यह कहा कि भाई चाहे अनेक आचार कर लो, तब एक ने कही कि आचार ना करें, अरे नहाने धोने की आवश्यकता ही नहीं है क्या? तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं थोड़ो बहुत करें, सदाचार के लिए करें। देखो आपके मन में आग्रह ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। एक संत थे, विरक्त थे, अब उनका नियम था कि वो पत्तल में ही पाते हैं भोजन। एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ, उनका रात्रि के भोजन के लिए उन्होंने बुलाया था, गांव में वो लोग रहते थे। अब उनके मन में भाव कुछ और था, संत भगवान पधारे हैं, तो जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उन्होंने उनके लिए की, चांदी के बर्तनों में उन्होंने भोजन परोसा। अब वो संत जी कहने लगे, बोले हम तो भाई पत्तल में ही पाते हैं। अब पत्तल कहाँ से आए, पत्तल उस समय उपलब्ध नहीं हो रही, वो जो महात्मा है वो अपना आग्रह छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा आग्रह मन में ना हो, किसी भी स्थिति को लेकर आग्रह मन में ना हो। महर्षि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, चर्चा हो रही थी कि एक दुशाला रखा है, एक फटा कंबल, एक विरक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने तत्काल उत्तर दे दिया, बोले निश्चित रूप से फटा कंबल उठाना चाहिए। उड़िया बाबा हंस दिए, बोले नहीं, बोले जिसके लिए फटा कंबल और दुशाला एक से है ना, वो विरक्त है, उसके हिस्से जो आ जाए वो विरक्त है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले कि मर्जी हुई गर यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वहीं मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ये वो विरक्त है, इसके मन में आग्रह ना हो। आग्रह हृदय को कठोर करता है भाई, आग्रह से हृदय में ग्रंथि पड़ जाती है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु के विधान से जो मिले

राका बांका जी की कथा बड़ी प्रेरक है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि भक्ति उनकी ऐसी अद्भुत, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी दयनीय है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं। नामदेव जी तो इतने खींच गए और पंडरीनाथ से जाकर कहने लगे, आपके भक्त हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, बोले आपको जरा भी लज्जा संकोच नहीं है, आपके भक्तों के पास दो समय का भोजन नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, बोले हम देना चाहते हैं, लेते ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप देना चाहें ये लेने, चलिए हमारे साथ दीजिए। प्रभु गए, नामदेव जी वृक्ष की ओट में खड़े थे, बोले देखना। ठाकुर जी ने कहा, बोले हम आपसे विनती करते हैं। राका माका कहने लगे, अब तो सच में ही कलयुग आ गया। बोले क्यों? बोले मायापति भी अपने भक्तों को माया ही देने का प्रयास कर रहे हैं, माया में ही उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले प्रभु यदि आप हमें ये देना चाहते हैं तो हमारी आपसे विनती है, आप पुनः यहाँ आने का कष्ट ना करें। नामदेव जी को तब विश्वास हुआ कि जाही न चाही कबहु कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। राका माका कहने लगे, प्रभु आप हमें दरिद्र समझते हैं जो देने के लिए आए, हमारे हृदय में ये जो आपका प्रेम उच्छलित है, हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं, सर्वोपरि समझते हैं। तब नामदेव जी ने देखा, वही राका बांका एक दिन जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, राका आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बांका वो पीछे पीछे चल रही थी। आगे देखा मोहरों की एक थैली रखी है, राका फटाफट से उस पर मिट्टी डालने लगे। बांका पीछे से आई, उन्होंने देख लिया कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या करते हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। मुस्कुराते हुए कहा, बताइए क्या कर रहे थे आप? बोले यहाँ ये स्वर्ण रखा था और मुझे लगा कि इसको देखकर तुम्हारे मन में कहीं कोई अन्यथा भाव न आ जाए तो मैं इस पर इससे पहले कुछ बोलते। बोले इसीलिए मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे थे। अरे पराया धन है हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी है। तब राका ने कहा, आप सच में बांका है, आपका भक्ति का भाव सच में बांका है, निराला है। मेरे लिए तो अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद है, पर आपके लिए तो स्वर्ण और मिट्टी में भेद भी नहीं रहा। तो ध्यान रखना भाई, कभी कभी आचार के नाम पर हमारे हृदय में आग्रह हो जाता है, और कभी कभी तो हम किसी का हृदय और दुखा बैठते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह के कारण। ऐसा ना हो, ध्यान रखना, अंतिम भावना जो प्रभु तक पहुंचेगी वो प्रेम ही है, वो आपके हृदय की विशुद्ध प्रीति ही है। अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, पर याद किसको रखा जाता है? झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। स्मरण तो इन्हीं का किया जाता है। जब श्री जी की सेवा पाक करे तहां आचार करे, बोले जब श्री जी के लिए रसोई करे तो शुद्धता का ध्यान रखे, और फिर भी कह रहे हैं जैसो संभव है, जहां तक संभव हो सके। अब बहुत सारी माताएं कई बार लिखकर प्रश्न पूछती हैं कि भाई घर में हमारी रसोई में तो सब प्रकार की वस्तु बनती है, हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें? आपके ठाकुर जी आपके हैं, आप आपके ठाकुर जी हैं, उनके बीच में न कोई आता है और न किसी को आने की कोई आवश्यकता है, और ना ही आप अनावश्यक रूप से किसी को लाइए। जो आपसे संभव हो, बस प्रेम की कमी ना होने पाए, भाव की कमी ना होने पाए। प्रसाद ही कोटि, फिर कहते हैं अपने प्रसाद पाएवे को बहुत आचार न करें। प्रसाद ही कोटि आचार को स्वरूप है, भोग लागे पाछे बहुत आचार उचित नाही। शास्त्र हूं मैं कही है, अति आचार अनाचार समान है। रांधे अन्न विषय कछु ना माने, जो भोग श्रीजू को लागो तो सब बराबर, कहा काचो कहा पाको। वैष्णव सदाचार के लिए आचार करें, मन में विश्वास न धरे कि यही ते कारज सिद्ध होएगो। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आचार भी करे कब? जब प्रभु को वस्तु निवेदन करनी हो। जब श्री ठाकुर जी को भोग लगा, उसके बाद जब स्वयं प्रसाद पाए तो बोले बहुत अधिक आचार विचार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद ही कोटि कोटि आचार का स्वरूप है। कोटि कोटि एकादशी महा प्रसाद को अनेक अनेक आचार के पालन करने का जो फल है, हो धन धन श्री।

कह रहे रांधे अन्न विषय कछु ना माने, ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वस्तु बुद्धि भी ना करिए, कच्चा पक्का भी देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ जाड़े के दिन होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया फिर वही प्रसाद कुछ देर के बाद पाते हैं तो उसे फिर पुनः चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, ऐसा करना अनुचित है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ठंडा गर्म नहीं है, प्रसाद कच्चा पक्का नहीं है, प्रसाद ऐसा वैसा नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद का जो परिणाम है ना, सब सुख एक सीथ के स्वाद, वो तो प्रसाद को प्रसाद रूप में पाने पर ही है। आप प्रसाद को वस्तु समझ कर पाओ तो उसका वो फल नहीं है, उसका वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का भी तो एक प्रसाद होता है ना, प्रसाद का प्रसाद है प्रभु के चरणों का अनुराग और दृढ़ होता चला जाए। अरे भक्त तो भगवान के प्रसाद

0: कोई और कर रहा है, तो जहां तक संभव हो सके। और वैसे भी मुझे लगता है भाई, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, ये तो एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए। पर ये मन में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बहुत शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे और कोई कम रहेगा तो हमारा कार्य पहले सिद्ध होगा, उसका नहीं। हो सकता है उसके हृदय की प्रीति हमसे अधिक गाढ़ी हो। अब कर्मा बाई तो जूठे दातुन से ही भोग हिलाकर जगन्नाथ जी को पवा देती है, शबरी चक चक कर फल देती है, लक्ष्मण जी नहीं खाते, रघुनाथ जी प्रेम से आरोगते हैं। श्री जी की टहल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं, भाई सब साधनों की सिद्धि क्या है?
1: भोर भये ते सांझ ढरे तक सेवा कोही नेम हमारो।
0: प्रिया जी की जो टहल है, जो सेवा है, ये सब पुण्यों का फल है, सब साधनों की सिद्धि है। और मुझे लगता है यही परम प्रसाद है। श्री जी की सेवा प्रसाद है। बहुत आचार ते हियो अति कठोर होए जाई। ही मैं आपसे कह रहा था, बहुत आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा भी नहीं लगता। ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा नहीं लगता जो पहले से ही सोच कर आए ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी को कैसा हृदय अच्छा लगता है? बोले जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे। तभी हमारी भोली सखी गाती है,

ना हमें ऐसा होना है ना हमें वैसा होना है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होना है, जैसा आप चाहें। जय विधि तो है अति प्यारी लागो, इसे कहते हैं मन और बुद्धि का समर्पण। ये भजन अति कोमल है और कोमल कठोर एक संग न बने। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई प्रयास करो आपके मुख से कठोर वचन ना निकले, रूखी बात मत कहिए किसी से। रूखी बात का परिणाम प्रतिक्रिया प्रकृति क्या देगी, एक बात तो निश्चित है सर्वविदित सिद्धांत है, आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आप कठोरता का प्रसार करेंगे कठोरता आपके पास लौट कर आएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, ठाकुर जी के भजन के योग्य नहीं रहेगा। तभी संत बल देकर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए है।

0: सकल हो।
1: और मुझे लगता है मीठा बोल ये तो ऐसा दान है जो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। सम्मान के दो शब्द तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। हमारे महाप्रभु जी का गुण है, हमारे महाप्रभु जी का ये गुण है, सबको मान देते, सभी मान प्रद आप अमानी। यही महापुरुषों का गौरव होता है भाई, सभी मान प्रद आप अमानी। अब साधारण मनुष्य जीवन भर इसी खींचातानी में मर जाता है, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूं प्रेम बांटिए, प्रकृति का कण कण आप पर प्रेम की वर्षा करेगा। आप जहां जाएंगे आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। प्रेम दीजिए, बांटिए, सम्मान दीजिए, प्रकृति आपको सम्मानित करेगी। और मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जिसको समय सम्मान देता है, वस्तुतः सम्मानित वही है समय जिसका सम्मान करता है। और समय किसका सम्मान करता है? जो समय का सम्मान करता है। समय का सम्मान क्या है? सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। समय का सम्मान क्या है? जीवन का आदर करना, यही समय का सम्मान करना है। और जीवन का आदर क्या है? कि जीवन का सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग क्या है? प्रसन्नता का प्रसार करिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको मनुष्य बनाकर इस सृष्टि में भेजा है, इसीलिए आए हैं आप यहां पर। अपने जीवन के अर्थ को, मूल्य को पहचानिए। जो स्नेही भजनीक हैं तिनके घटबड़ क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अच्छा, एक और बात यहां मैं आपको कहूं, साधु संत जैसे भी भजन करें, बस उनकी जय हो, जय हो, जय हो। ध्रुवराज जी कह रहे हैं उनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे, पता नहीं उनके हृदय की, उनके भाव की पहुंच कहां तक है। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया, गंगा किनारे लेटे वो साधु, एक युवान साधु कहता है, अरे 10 बज गई अब तक सो रहे हो? अब खबर नहीं वो सो रहा है कि भाव समाधि में है। अब क्या जरूरी है कि ऐसे ही बैठकर ही भजन किया जाए? और मैं तो कहता हूं किसी की भी, साधु की क्या,

किसी की भी घटबड़ क्रिया में मन देना ही क्यों है? कौन भला करता है बुरा करता है? मैं कहता हूं इसका विचार आपको मुझे करना ही क्यों है? इसकी आवश्यकता क्या है? न कहिए न सुनिए। और संत हो फिर तो नानक कहते हैं संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत हो तो फिर तो बहुत सावधान रही, न कहिए न सुनिए। कहीं ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा होता उठकर चल दीजिए, सम्मिलित मत होइए। मौन रहना भी सम्मिलित होना है, ऐसा मत करिए। दुर्दास जी कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन पर वार डालिए। अब देखने को तो रैदास जूता ही गांठ रहे थे, गोरखनाथ आए प्रसाद का जल दिया, नहीं पिया वो जल गया कहां सिंध, कबीर जी की बेटी ने पिया, बड़े भाव से उसको ग्रहण किया, शिरोधार्य किया। गोरखनाथ जब मुल्तान पहुंचे तो कमारी ने एक क्षण में गोरखनाथ का वो खप्पर भर दिया जो बड़े बड़े सिद्ध नहीं भर पाते थे। तो गोरखनाथ ने पूछा ये कमाल किसका है? बोले वो पानी जो आप छोड़ आए थे उसी पानी का कमाल है, वो जो आप छोड़ आए थे ये उसी पानी का कमाल है। तो दुर्दास जी यहां यही कह रहे हैं अरे तिनके एक निमेश के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डालिए। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। ब्रह्मा जी को भूल हो गई, ब्रज के ग्वाल बालों को साधारण समझ बैठे, साधारण समझ लिया। तो कह रहे ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। जो यह बात मन में न आवे कह रहे तिन सब अनाचार किए। बोले किसी संत में दोष देखा तो उसके कोटि कोटि आचार बोले धूल में मिलते हैं, वो सब अनाचार है। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। देखो भाई यहां पर केला की कौपीन धारण करने वाले ने भी भगवत प्राप्ति की है और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे महाराजा अम्बरीश ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष है कि भगवान उनके लिए कहते अहम भक्त पराधीना। यहां उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है। इसलिए भाई जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, बड़ी बात है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, प्रभु का भजन होता रहे, हरि का स्मरण ना छूटे, प्रभु का स्मरण ना छूटे। जो स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीरथ है। श्री गुसाई कृष्णदास जी को पद, साधु चरण रज सब सुख साधन यह मेरे मत काज सुधी को। और श्री व्यास जी को पद, साधु चरण रज माज व्यास से कोटिक पतित समाद। कल ही प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था श्री शबरी जी का कि जो जप से नहीं हुआ, तप से नहीं हुआ, योग सिद्धियों से नहीं हुआ, पुण्यों से नहीं हुआ, ज्ञान ध्यान से नहीं हुआ, विद्या से नहीं हुआ, वो कार्य शबरी के चरण धूल से हुआ। ये इसी के प्रतिष्ठा भगवान ने की कि साधु चरण रज मांज व्यास से कोटिक पतित समाद। और श्री गोसाई कृष्णदास जी तो कहते हैं बोले संतों की जो चरण धूल है ना यही सब सुख का साधन है। और बोले मेरे जैसे कपटी का सुधार तो बस इन्हीं चरणों की धूल में लोटपोट होने से ही हो सकता है, और कोई साधन हमारे पास में नहीं है।

अनंत लीला अवतार, अनेक दिन की ऐश्वर्यता को पारावार नहीं, ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तीनों में भेद भक्त बहुत हैं। जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो, ते सब नीके हैं घट को नाही। देवदास जी कहने भाई ठाकुर जी के अनेक अनेक रूप हैं, अनंत रूप रूप आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी अनंत अनंत प्रकार के भक्त हैं। और ध्रुवदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की ही लीला अनेक प्रकार की है, द्वारिका लीला है, मथुरा लीला है, ब्रज लीला है, उसमें भी सख्य लीला है, वात्सल्य लीला है, माधुर्य लीला है। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो है।

0: ते सब नीके हैं, सब भले हैं, घट को उनाई। कभी भी अपने मन में भावना आए कि हम श्रेष्ठ भजन करते हैं, जो प्रभु का भजन करता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी.
5: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ. सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ.

0: जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जी के विचार।
1: दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? अलग अलग लोगों से अलग अलग बात सुनेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, अमीर होने के लिए, पैसा बनाने के लिए कहां इन्वेस्ट करें? कुछ लोग आपको बोलेंगे इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। नीति आयोग भी कहता है कि 2030 तक आते आते $1 trillion का ये बिजनेस होने वाला है और GDP में 13% कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो मैक्सिमम लोग, आपको पुराने लोगों से मिलिए तो बोलेंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, वो आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और वो आपको बेस्ट रिटर्न देती है। कुछ और लोगों से मिलिए, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक्स में लगाइए, बॉन्ड्स में लगाइए, इंश्योरेंस में लगाइए, म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, ये आपको बेस्ट रिटर्न देते हैं। कुछ लोग और आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक भी नहीं, बॉन्ड भी नहीं, इंश्योरेंस भी नहीं, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड एंड सिल्वर। आज से 60 साल पहले गोल्ड इतने का था, आज इतने का है, उस समय लिया होता तो आज रईस होते। कुछ लोग गोल्ड और सिल्वर के लिए ऐसी ऐसी बात बोलेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट इन कम्युनिटीज विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। अलग अलग लोग इन्वेस्टमेंट की अलग अलग परिभाषाएं आपको बताते हैं कि पैसा बनाने के लिए कहां निवेश करना जरूरी है। आखिरी में कुछ बुद्धिजीवी लोग बहुत शानदार बात आपसे करेंगे, वो कहेंगे सब छोड़ दीजिए, सब बेकार की बात है, इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन एजुकेशन विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। हाँ बिल्कुल ठीक है कि बच्चों की पढ़ाई में निवेश करने से आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं। साथियों, आज मैं सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच, आपको बता देना चाहता हूं कि कहां इन्वेस्टमेंट आपको कंपाउंडिंग रिटर्न देता है। मैं जो बात आपसे करने वाला हूं वो धमाकेदार बात है। वो बात आपको बताएगी कि कैसे गरीब इंसान अमीर हो सकता है, कैसे कुछ लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं, कैसे कुछ लोगों ने जिंदगी में वो फतेह हासिल की है जो बहुत सारे लोगों के लिए महज एक सपना है। मैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं कि कहां निवेश करना चाहिए। सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज मैं आपके जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पे भी बात करूंगा, कहां इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट रिटर्न देती है। मैं बताता हूं, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न। खुद के अंदर निवेश करें, अपने अंदर इन्वेस्टिंग कहां होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपको है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, आपको खुद को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना स्टॉक, ना बॉन्ड्स, ना प्रॉपर्टीज, ना चिल्ड्रन एजुकेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की बेहद आवश्यकता है। इन्वेस्टिंग इन योर नॉलेज, योर स्किल्स विल गिव यू द कंपाउंडिंग रिटर्न्स। अगर आप ये जानते हैं पर कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते, अगर आप जानते हैं और कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते हैं। और आखिरी में, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, सबसे बड़ा वेपन चलाते हैं, जानते हैं क्या लिखता हूं, ये सब किस्मत का खेल है भाई, सब किस्मत का खेल है। वो रईस बन गया, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। देखो सोनू शर्मा को 10वीं में मात्र 50% नंबर थे, क्या जबरदस्त नोट छाप रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ बिकॉज सक्सेसफुल पीपल बिलीव इन कोचेस व्हाइल अनसक्सेसफुल पीपल नोज एवरीथिंग। हमें सब पता है, नहीं चलता, अब हमने दुनिया देखी है ये भी नहीं चलता। आपका तजुर्बा आपको जहां तक ला सकता था ले आया, आगे का सफर आपके तजुर्बे से नहीं, नॉलेज से होगा। आज का वीडियो आखिरी तक देखें, आपकी जिंदगी बदलने के लिए ये 12-15 मिनट का वीडियो काफी है। आज मैं आपको वो 5 सफल सिद्धांत बता रहा हूं जिन्होंने कुछ लोगों को शीर्ष तक पहुंचाया। ऐसी पिटारा आपके सामने आज खोलने वाला हूं जो ना आपने सुना होगा ना आपने सोचा होगा। आज की वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देखा तो मैं दावा दे सकता हूं कि आपकी लाइफ सुपर सेट हो सकती है। 5 सक्सेस प्रिंसिपल आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, क्या करने से सफलता मिलती है। प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है? प्रिंसिपल नंबर वन बहुत शानदार है। क्या? नंबर 1, स्टार्ट योर करियर एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गाइस, बहुत सफल सिद्धांत मैं आज आपको दे रहा हूं। स्टार्ट योर करियर सुपर अर्ली, जितनी जल्दी हो सके अपना करियर स्टार्ट कर डालिए। वॉरेन बफेट ने अपना करियर 11 साल की उम्र में चालू किया। पहली इन्वेस्टमेंट उन्होंने 11 साल की उम्र में की, दुनिया के टॉप 5 रईस लोगों में से हैं। इसमें भी वो एक बात कहते हैं कि मुझे और जल्दी शुरू करना चाहिए था। जानते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम क्या है? मेरा बच्चा बड़ा छोटा है, धूप लग जाएगी, सर्दी में जाएगा तो जुकाम लग जाएगा, अभी उम्र बड़ी छोटी है, खेलने खालने की उम्र है। ऐसी बातें मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को मिडिल क्लास कर देती है। सफल लोग जल्दी शुरू करते हैं। वर्जिन अटलांटिस के मालिक रिचर्ड ब्रांसन ने अपना करियर 16 साल की उम्र में चालू किया। जानते हैं दुनिया के सबसे रईस इंसान एलन मस्क ने अपना पहला सॉफ्टवेयर महज 12 साल की उम्र में बेच दिया। और हमारे यहां 12-13 साल की उम्र खेलने खालने की उम्र होती है, जिस उम्र में दुनिया के दिग्गज लोग अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। मैं आपको ये प्रिंसिपल देना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल एंड इफ यू आर अ टीनएजर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय अभी शुरू होता है अगर आपकी उम्र 16-17 साल है, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कम से कम 5-8 साल लगेंगे। अगर आज आप 17 साल में हैं, 8 साल और जोड़ लीजिए, 25 साल में आप एक सफल इंसान होंगे। जितनी कम उम्र में शुरू करेंगे उतना ज्यादा समय मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 2 आपको बता देना चाहता हूं, फेल क्विकली बट कीप मूविंग। फेल हो जाइए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई एतराज नहीं है। फेल क्विकली, जल्दी फेल होइए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट कीप मूविंग, बढ़ते रहिए। मैं आपको एक सबसे अच्छी बात आपके लिए बता देना चाहता हूं, जो लोग अर्ली बिगनर हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आप 100% फेल होने वाले हैं। अरे आप बोलेंगे सोनू सर ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं इस दुनिया की, आप 100% फेल होने वाले हैं, सच है, क्योंकि आपने यात्रा बहुत जल्दी शुरू कर दी। अभी आपके पास ना स्किल है ना मार्केट का नॉलेज है, हो सकता है कोई मेंटोर भी ना हो जो आपको बचा सके। स्क्रैच से करोड़पति बनने का एक ही तरीका है, क्या? जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो कर लो। इस उम्र में जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो करो और कन्वर्ट करो उसको एक्शन के अंदर। जब आप मार्केट में चैलेंज फेस करो तो मान लो कि मार्केट आपका टेस्ट ले रही है। डरना मना है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ द जर्नी। फेल हो जाइए, जल्दी फेल होइए, बट कीप मूविंग। तीसरा सफल सिद्धांत आपको देता हूं, एजुकेट योर सेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी मिलेनियर एंड बिलेनियर, एजुकेट योर सेल्फ। निरंतर सीखते रहिए, बुक्स पढ़िए, इंटरव्यूज पढ़िए, केस स्टडीज पढ़िए सफल लोगों की, एनालाइज कीजिए बाकी लोगों के बिजनेस। और जानते हैं मजे की बात क्या है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन बहुत चीपर है या एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपको इस वीडियो को देखने का, फोकट में देख रहे हैं कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। दुनिया में सबसे सफल बढ़िया ज्ञान फोकट में मिल जाता है दोस्त, बस अफसोस है कि हम सीखते नहीं है। 300 से ज्यादा वीडियो हैं हमारे चैनल के ऊपर, जरूर सब्सक्राइब करिए। 300 से ज्यादा फ्री वीडियो जहां पर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं एजुकेट योर सेल्फ, सीखिए, केस स्टडी से सीखिए, सफल लोगों की जीवनी से सीखिए और सारा का सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी जिंदगी में लगाइए। जहां मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस आज आपके यूट्यूब के अंदर है, जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे अपन सफल हुए। इफ यू वांट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है? मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यह बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है, इन्वेस्ट इन बुक्स, रिकॉर्डिंग्स, हर चीज जो आपकी स्किल को बिल्ड करे। और जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे ना, उतने ज्यादा समय तक उन स्किल्स को यूज कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे उतने ज्यादा समय तक स्किल्स को यूज कर सकते हो। कार अगर आपने 18 साल की उम्र में सीख ली और आप 80 साल जीते हैं तो 62 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कार 60 साल की उम्र में सीखी और 80 साल तक जिए तो उसका फायदा सिर्फ 20 साल उठा सकते हैं। Become a self-learner. Learn about time management, how to talk. हर टॉपिक पर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। सीखिए और आगे बढ़िए। प्रिंसिपल नंबर 4 आपको बता देना चाहता हूं, सांसें थाम के बैठिएगा क्योंकि आपको ये डेंट करने वाला है, आपको चोट देगा, आपको पीड़ा पहुंचाएगा कि सोनू सर आज क्या बताने के मूड में आए हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, सैक्रिफाइस सोशल लाइफ। यस बॉयज एंड गर्ल्स, सैक्रिफाइस सोशल लाइफ। अपनी सोशल लाइफ को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। गुर्बत और गरीबी से निजात पाने के लिए कीमत आपको देनी ही पड़ेगी, यह कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल एक रॉकेट की तरह जिसका सबसे ज्यादा फ्यूल ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने में लग जाता है। आपकी जो शुरुआती साल हैं उसमें आपको सोशल लाइफ को बायकॉट करना पड़ेगा। जी हां, 40 घंटा अगर आप एक हफ्ते में काम करते हैं, मैं रिपीट करता हूं, अगर आप एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटा ही काम करते हैं तो ये सिर्फ आपके खाने की पूर्ति करेगा, आपके बिलों का भुगतान करेगा, दैट्स इट। अगर आप 40 आवर्स अ वीक मेहनत करते हैं तो सिर्फ बिल भुगतेंगे आपके, आप एक आम जिंदगी जिएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अगर आपके वर्किंग आवर्स 40 से बढ़कर 100 हो जाते हैं, अगर एक हफ्ते में आप 100 घंटा काम करते हैं, यह आपको लाइफस्टाइल देगा, ये आपको जबरदस्त लाइफ देगा और आपको एक अमीर लाइफ को फील करवाएगा अगर आप 100 घंटे काम करते हैं। लेकिन 100 घंटे काम कब करेंगे? जब सोशल लाइफ को बायकॉट करेंगे। कोई फालतू की दोस्ती नहीं, फालतू की रिश्तेदारी नहीं, कहीं फालतू का आना नहीं, फालतू का जाना नहीं, इधर उधर की गॉसिप में खोपड़ी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना अपने करियर और अपने गोल के ऊपर। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि ये कीमत ही नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं है। आप भी बाकी लोगों की तरह आम जिंदगी जी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप डिसाइड करिए कि आप कितने घंटे रोजाना अपने मोबाइल स्क्रीन पर ऐसी की तैसी कराकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। लोगों के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 7-7, 8-8 घंटे के आवर्स हैं, कैन यू बिलीव इट। दुनिया भर का अनप्रोडक्टिव काम लोग बात करते हैं, कभी इसकी शादी में जाना है, कभी उसके रिश्तेदारी में जाना है, कभी फालतू फंड का गॉसिप करना है, चार दोस्त बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। 24 घंटे खत्म होने के बाद, वो 24 घंटे दुनिया भर की संपदा देने के बाद भी आपके पास नहीं आते। आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा सोशल लाइफ और फोकस करना पड़ेगा अपने करियर के ऊपर। पांचवी सबसे खतरनाक चीज, सराउंड योर सेल्फ विद हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। अपना वातावरण सफल लोगों के साथ बनाइए। कुछ भी ऐसा करिए कि आपके आजू बाजू में वो लोग हों जो आपको इंस्पायर कर सकें। कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिए, कुछ ऐसी एसोसिएशन तलाशिए जहां पर आपके आजू बाजू के लोग बड़ी बात करने वाले हों, बड़े सपने देखने वाले हों, बड़े आइडियाज हों जिनके पास, और अर्ली बिगिनर्स हों जिनके पास गीता ज्ञान के नाम पर कुछ ना हो लेकिन एनर्जी सुपर फास्ट हो। इन सबकी एसोसिएशन में आप कमाल कर जाएंगे। बींग विद अ विनर मेक्स यू अ विनर and being with a loser will make you a loser. Ladies and gentlemen, ये 5 प्रिंसिपल अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर गए, मैं दावा दे सकता हूं ये साल आपकी जिंदगी का बेहद खूबसूरत साल हो सकता है।

0: रॉकी भाई जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है तो फॉलो करो KGF हेल्थ टिप्स
1: कोलार गोल्ड फील्ड।
0: नहीं, KGF मतलब कीप जिमिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी।
1: ऐसे ही सिनेमैटिक हेल्थ टिप्स जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को छटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

शानदार ट्रैक के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। भाई 7 बज चुके हैं और सुबह हो गई है प्यारी वाली, यानी कि अब टाइम हो गया है बिस्तर छोड़कर जाने का ऑफिस। तो देखिए, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर अपने घर में ही क्यों रहिए, आज के दिन को अच्छे से एंजॉय करने का तरीका ये है, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की पहली चुस्की लीजिए और एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पे मॉर्निंग एक्सप्रेस शो को, जहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यानी कि यहाँ आपको मिलने वाला है एंटरटेनमेंट का डबल डोज, साथ ही आपको मिलेगा वेदर अपडेट से लेकर सोशल स्यापा और क्या कुछ हो रहा है आपके आसपास, यानी कि किस तरह का स्कैम आ गया है मार्केट में, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना होगा इंतजार, तो बस फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संजना, सिर्फ तुम्हारा।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज, अर्ज
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों,
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मिनी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो टिकट कटवा लेना।
2: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
3: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
4: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: लगता है बॉस हमें टॉस करने वाला है।
1: इस शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो अब टाइम हो गया है वेदर अपडेट का। अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 38 डिग्री जाने वाले, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 29 डिग्री रहने वाले, विंड स्पीड आपको 30 मिलने वाली है। इसी के साथ अगर ह्यूमिडिटी की बात की जाए 36% ह्यूमिडिटी है आज। दिन रहने वाला है सनी सनी, यानी कि अच्छी खासी धूप निकलने वाली है। और वैसे भी गर्मियां हैं तो गर्मियों में हाइड्रेशन का ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत है। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और स्वाति सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी। सुबह की लेजीनेस को दूर भगाने के लिए सुनते रहिए मॉर्निंग एक्सप्रेस ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो टिकट कटवा लेना।
2: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
3: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे। इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
4: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

एनर्जेटिक पर्सनालिटी रखती है हैदा। इन्होंने फिल्म्स के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अपनी फैन कंटेंट और यूनिक स्टाइल से फैंस का दिल जीत रखा है। सो माय डियर लिसनर्स, चले करते हैं हैदा शर्मा को विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे हैदा। अब ऐसे ही हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, अपने फैंस का दिल जीतते रहे और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: से अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हक
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ अर्चन छे आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं एक ऐसा दिन लेकर आई हूँ ना जिस दिन का इंतजार शायद हर कोई करता है, खासकर फिटनेस फ्रीक लोग जितने भी आज मुझे सुन रहे हैं ना। तो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल ईट व्हाट यू वांट डे। जी बिल्कुल भाई, नेशनली ये डे मनाया जाता है, यानी कि ये डे ना ये कहना चाहता है डाइट कल से करने ना आज फेवरेट फूड हो जाए। अगर नेशनल ईट व्हाट यू वांट डे की बात करूं तो ये एक फन डे है जो गिल्ट फ्री फूड क्रेविंग्स को डेडिकेट किया जाता है। और आज आप पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, गोलगप्पे कुछ भी खा सकते हो भाई, अपनी फेवरेट डिश खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो बिना किसी एक्सक्यूज के, बिकॉज आज हम नेशनल इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है, एंजॉय जरूर कीजिएगा जो भी आपको खाना है, लेकिन बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हैप्पीनेस भी इम्पोर्टेंट है और हेल्थ भी। सो माय डियर लिसनर, कैलोरीज आज काउंट नहीं होंगी, बस मेमोरीज और फ्लेवर्स काउंट होंगे। तो बताइए आज आपकी चीट मील क्या होने वाली है, और इसी के साथ एंजॉय कीजिएगा आज का दिन, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में। और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: मोबाइल पर एक क्लिक से आप दुनिया घूम सकते हैं, पर वाहन चलाते समय मोबाइल यूज करने पर आप दुनिया से गुम हो सकते हैं।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

बात अगर टेक्नोलॉजी की आए ना, तो ये साफ पता चलता है कि टेक्नोलॉजी ने लाइफ को सिर्फ फास्ट नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इजी बना दिया। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन छे आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यानी कि एक दिन जो इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करता है। अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की तो क्या इम्पैक्ट है, ऑनलाइन क्लासेस से वर्क फ्रॉम होम तक आ गए हैं हम लोग, UPI पेमेंट से स्मार्ट गैजेट तक का सफर टेक्नोलॉजी ने तय किया है, साथ ही हेल्थ केयर, ट्रेवल और कम्युनिकेशन सब इजी हो गया है, हर जगह टेक्नोलॉजी नजर आती है। अगर बात की जाए ना इंडिया की, तो इंडिया के लिए स्पेशल है टेक्नोलॉजी। आज का दिन यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया के साइंटिफिक प्रोग्रेस और इनोवेशन स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए कहा जाता है जितनी टेक्नोलॉजी पावरफुल है ना, लेकिन उसका स्मार्ट और सेफ यूज और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो माय डियर लिसनर, अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो स्मार्ट रहना तो पड़ेगा ही, यानी कि एक क्लिक में दुनिया कनेक्ट हो जाती है। यही टेक्नोलॉजी का मैजिक है जो हमें आज का दिन बताता है। तो आज उन इनोवेशंस को अप्रिशिएट कीजिएगा जो हमारी डेली लाइफ को बेटर बना रही है, साथ ही टेक्नोलॉजी का यूज स्मार्टली कीजिएगा, ओवर यूज नहीं और ना ही मिस यूज। इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमा को वनबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फ्री समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेड लिंक मत खोलना वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रिकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, एप्स अपडेटेड रखो वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

जितनी जरूरी हमारे लिए सनलाइट है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी हमारे लिए प्रोटेक्शन भी है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज से शुरू हुआ है सन अवेयरनेस वीक। तो हम इस वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर इस वीक की बात करूँ तो एक अवेयरनेस कैंपेन जो सन सेफ्टी एंड स्किन हेल्थ पर फोकस करता है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि एक्सेस सन एक्सपोजर से बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कई बार सनबर्न हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, इवन स्किन तक डैमेज हो जाती है एंड लॉन्ग टर्म स्किन प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है। सो माय डियर लिसनर, अगर आप बहुत ज्यादा विटामिन डी लेने के चक्कर में सन के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं ना, तो आपको बता दूं ये सारी चीजें हो सकती हैं आपको। सो किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना है, बस यही बताने आई हूँ। सबसे पहले तो घर से बाहर निकलते समय सनस्क्रीन जरूर यूज कीजिए, पीक आफ्टरनून हीट अवॉइड कीजिए एंड साथ ही सन ग्लासेस और कैप जरूर पहने। हाइड्रेटेड रहें, जितना हाइड्रेटेड रहेंगे उतना ज्यादा आप इस हीट को बीट कर पाएंगे स्मार्टली। सो बस इस गर्मी को एंजॉय कीजिए स्मार्टली। हेल्दी स्किन के लिए थोड़ी सी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, यही बताने के लिए आज मैं फिटनेस वाले फंडे में आपके लिए सन वीक लेकर आई थी। सो एंजॉय कीजिए आज का डे मुल्तान म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

बात अगर AI की जाए ना तो हर फील्ड में नजर आ रहा है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। अब इंडियन रेलवेज का AI सेफ्टी अपग्रेड भी आ गया है भाई सामने, यानी कि अब जो हमारे रेलवे ट्रैक्स की सिक्योरिटी है उन पर भी AI नजर रखेगा। और इंडियन रेलवे अब सेफ्टी को और स्मार्ट बनाने के लिए AI पावर ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम लाने की प्लानिंग कर रही है। अगर इस सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं आखिर ये सिस्टम काम कैसे करेगा। इस सिस्टम के अंदर AI एनेबल इंस्पेक्शन व्हीकल्स यूज होंगे एंड इतना ही नहीं ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार से ट्रैक के नीचे की प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होंगी, यानी कि हिडन फॉल्ट्स का अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल हो पाएगा AI के थ्रू। और रेलवेज ने अगर ये इनिशिएटिव लिया है तो इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, जैसे कि टाइमली मेंटेनेंस हो सकेगी, एक्सीडेंट रिस्क कम होगा, साथ ही ब्रिज और क्रॉसिंग जैसे सेंसिटिव एरियाज पर बेटर मॉनिटरिंग हो सकेगी। सो अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की तो टेक्नोलॉजी सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं बल्कि सेफ्टी के लिए भी गेम चेंजर बन रही है। इंडियन रेलवेज का ये स्मार्ट स्टेप फ्यूचर ट्रेवल को और भी ज्यादा सिक्योर बना सकता है। सो माय डियर लिसनर्स, अगर बात टेक्नोलॉजी की जाए ना तो टेक्नोलॉजी हर जगह है, लेकिन अगर आप उसका सही से इस्तेमाल करते हो तो ये आपके लिए एक वरदान की तरह, एंड अगर आप इसका मिसयूज करते हो ना तो आपको बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी झेलना पड़ सकता है। सो चूज वाइजली और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
5: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
4: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

ये गर्मी तो भाई आपकी गर्मी को भगाने के लिए ना मैं लेकर आई हूँ ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आई नो अब आप ही बोल रहे हो कि अंशली तुम तो हमेशा फिटनेस वाले फंडे लेकर आती हो, लेकिन आज ये आइसक्रीम कैसे लेकर आ गई? तो भाई इसमें भी अपना ही मजा है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आज अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल तो मैं आज एक ऐसी स्टडी लेकर आई हूँ जहाँ पर ये बताया गया है कि कभी कभी अगर आप आइसक्रीम खाते हो ना तो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं बल्कि हो सकते एक प्रोटेक्टिव। बिल्कुल भाई, क्योंकि जिंदगी में से अगर मिठास हटा दी जाए, लेकिन अभी स्टडी ने भी प्रूव कर दिया है कि आप कभी कभी आइसक्रीम खा सकते हो। अब जब बात कर रहे हैं स्टडी की, तो सबसे पहले इसकी रियलिटी चेक को जान लेते हैं। कहा जाता है कि जो ये डेयरी फैट्स है उतने विलन नहीं होते जितना हम इन्हें मानते हैं। यानी कि अगर आप आइसक्रीम एक मॉडरेट अमाउंट में खाते हो, एक क्वांटिटी में खाते हो ना कभी कभी, तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ, एक्सेस अमाउंट में मत खाइएगा क्योंकि इससे हार्ट डिजीज बढ़ सकती है। सो भाई यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी की है वो है बैलेंस। अगर आप बैलेंस में खाएंगे ना तो आप एंजॉय कर सकते हो गर्मियों ठंडी ठंडी आइसक्रीम। यानी कि सिंपल सा बैलेंस आपको ये बनाना है कि आप अगर एक स्कूप आइसक्रीम खाते हो तो आपकी चेहरे पर स्माइल लेकर आएगी, और वहीं अगर आप डेली टब खाते हो ना तो ये जरूर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो माय डियर लिसनर्स, आज ही गिल्ट फ्री होकर आइसक्रीम एंजॉय कीजिए, लेकिन भाई से अपना लंच ब्रेकफास्ट एंड डिनर मत बनाइएगा। सो एंजॉय कीजिए इस गर्मियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम को। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज, अर्ज
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों,
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बहुत सारी मस्ती के बाद, बहुत सारी अपडेट्स के बाद और बहुत सारी ट्रेंडिंग म्यूजिक के बाद फाइनली अब टाइम हो गया मेरा यहाँ से जाने का। और सुबह 7 बज रही थी, अब 10 बजने वाले हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो मारन 89.6 FM पर। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस के साथ बाकी शोज को, और बनी रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

इसी गाने के साथ वेलकम है आप सभी का मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर से पहले चर्चा है फरीदाबाद के गलियारे की। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में, जो इस वक्त 31 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है 10:06 वक्त। बात करें साथ ही साथ आगे आने वाले 72 घंटों के बारे में। जी हाँ, मौसम विभाग का कहना है कि आगे आने वाले 72 घंटे कुछ ऐसे रहने वाले हैं कि बारिश के आसार बनते नजर आएंगे। जहां कल भी मौसम साफ बन रहा, लेकिन दिन भर तेज धूप के बावजूद भी गर्मी उस हिसाब से नहीं परेशान कर रही। 11 से 23 मई तक अगर बात करें तो बादल छा सकते हैं, तेज हवाएं और बारिश होने की संभावना। जहां कल 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैक्सिमम रहा और मिनिमम 26, अभी 31 बनाया। अब देखते हैं क्या आगे टेम्परेचर होगा और आने वाले वीकेंड तक गर्मी फिर से बढ़ती नजर आएगी। 13 मई के बाद मौसम फिर से ऐसा होने लगेगा कि गर्मी से हर कोई कहेगा बहुत छुटकारा और कहेंगे बरसों रे मेगा। अब देखते हैं इन 3 दिन बरसते हैं या क्या होता, बाकी ऐसी अभी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गली। यहाँ अब हम बात करते हैं दोस्तों फरीदाबाद के खिलाड़ियों के बारे में। जी हाँ, फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट प्लान जो बनाया जा रहा है इसमें सेक्टर 12 खेल परिसर और राजा नार सिंह फुटबॉल ग्राउंड को खामियां दूर की जाने वाली हैं। जी हाँ, जहाँ पे हॉकी एस्ट्रॉट फुटबॉल ग्राउंड में चेंजिंग रूम भी बनाए जाने वाले और इन सभी ग्राउंड्स को मेंटेन भी किया जाने वाला है। जितनी भी खामियां इन जगहों पर दिखाई दें, चाहे वो हॉकी ग्राउंड है उसको रोशनी से अब दूर दिखाई देता है तो उसमें रोशनी की जाने वाली है, जहाँ पे बढ़िया से चेंजिंग रूम्स वॉशरूम्स टॉयलेट्स बनाए जाने वाले। जिसके अलावा राजनार सिंह फुटबॉल ग्राउंड को भी बेहतरीन करने की तैयारियों में जुटा हुआ है इस टाइम प्रशासन। तो अच्छी बात है, खिलाड़ियों को जितना ज़्यादा अच्छा जगह एटमोसफेयर मिलेगा उतना ही शहर और देश भर का नाम रोशन करते नजर आएंगे। बाकी ऐसी भी चर्चाएँ होती रहेंगी, उससे पहले कॉल

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं फरीदाबाद के गलियारों से कुछ खिलाड़ियों के बारे में, जहाँ फरीदाबाद के खिलाड़ी ने लगभग 200 से ज्यादा मेडल्स अपने नाम किए। जी हाँ, किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि अगर बात की जाए तो फरीदाबाद शहर में स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया, जहाँ फरीदाबाद के नाम 240 मेडल्स। जी हाँ, इसमें 157 गोल्ड मेडल, 67 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हुए। गुड़गांव की टीम दूसरे नंबर पर आई, 94 मेडल्स जीत करके झज्जर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। फरीदाबाद के खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामना है कि बेहतरीन प्रदर्शन करके पहले नंबर पर आए और इतने अच्छे खासे मेडल जीते। उम्मीद है ना कि स्टेट लेवल बल्कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल कर भी अपने देश का नाम रोशन करते नजर आएंगे सभी खिलाड़ी। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सरप्राइज।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधारा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यह दोस्तों आज बहुत ही चर्चाएं करने वाला हूँ कि कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा घरों में रिलीज होने को हैं तैयार। कुछ का होगा आगाज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तो कुछ होंगी सिल्वर स्क्रीन पर, नई कहानियां नई जोड़ियां तो कुछ नए गाने। वही आपको बताऊंगा लास्ट वीकेंड रिलीज हुई कहानियों की चर्चा है कि कौन से पायदान पर अपना स्थान बरकरार करे हुए हैं और कुछ ऐसी स्टोरीज जहां पे कुछ नई जोड़ियां सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाती नजर आएंगी। कहीं हुआ ट्रेलर आउट तो कहीं है टीजर का धमाल, तो कहीं पंजाबी गानों का होगा धमाल। साउथ इंडस्ट्री से पंजाबी इंडस्ट्री तक की कहानियां तो कहीं होगी हॉलीवुड की कहानियों की चर्चा। ये सारी चर्चा करने वाला हूँ सिनेमा के गलियारों में, लेकिन चर्चा करने से पहले यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले सुना देता हूँ कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके।

0: बन्नों की सहेली से लेकर दीदी का दीवाना देवर पूरे सिनेमा की अपडेट मिलेगी ओनली इन फिल्मी फ्लेवर।
1: बंदा है ये खुद से बेगाना, अजी बंदा है ये खुद से बेगाना।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लिप। यहाँ दोस्तों बात करते हैं सिनेमा के गलियारों से अब विकी कौशल के बारे में। जी हाँ, विकी कौशल अपनी संजय लीला भंसाली फिल्म लव एंड वॉर विद रणबीर कपूर आलिया भट्ट के बाद अपना अगला बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जो कि अमर कौशिक की महा अवतार होगी, एक माइथोलॉजिकल एपिक। उन्हें परशुराम जैसी भव्य भूमिका निभाने जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें करीब 18 महीने अपने कैलेंडर में अलग से ब्लॉक किए। जी हाँ, जून से दिसंबर 26 इंटेंस ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और एक्टिंग प्रेप में बिजी रहने वाले। जनवरी 27 से दिसंबर 2027 फिल्म की मेन शूटिंग होगी, यानी लगभग एक साल की ईयर लॉन्ग स्केड्यूल, जिसके दौरान बाकी के नए स्केड्यूल्स नहीं लेने को तैयार, ताकि भूमिका में लगातार कॉन्टिन्यूटी बनी रहे और अपने इस किरदार को बेहतरीन तरीके से सबके सामने लाए। वी कौशल इस महाकार के लिए हरकसी कर रहा है इंतजार, देखते हैं क्या बेहतरीन लाने वाले। बाकी इस चर्चा होंगी सुबह रिकॉर्ड रहे।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेम। यहाँ दोस्तों बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से हम एक और बढ़िया चर्चा जहां भेद की जाए टीवी की दुनिया की चर्चा जहां पे इस वीकेंड कौन सी कहानी कौन से पायदान पर। वैसे जब से क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीक्वल आया तब से अनुपमा अपनी जगह से कह सकता नजर आया और क्योंकि सास भी कभी बहू थी अभी भी नंबर वन पर बने हुए। स्मृति ईरानी स्टार रिवाइवल कॉन्टिन्यूएशन 1.8 GVR के साथ अपनी टॉप पोजीशन बरकरार। दूसरे नंबर पर वसुधा गंगा माँ की बेटियां, देन फोर्थ नंबर पर अनुपमा और फिफ्थ पर तुम से तुम तक। जहां अनुपमा पहले और दूसरे पायदान पर था वहीं से खिसक पे फोर्थ नंबर पर आ गया और सबसे पहले क्योंकि सास भी कभी बहू थी और देन वसुधा और गंगा माई की बेटियों ने अपनी जगह बरकरार रखी। देखिए कहीं ना कहीं टीवी के गलियारों में TRP कुछ चेंज होते नजर आ रही है पिछले कुछ अरसे से। आप देखते हैं आगे आने वाले वीकेंड्स में क्या होगा। बाकी ऐसी भी चर्चा होते रहेंगे, उससे पहले एक और खूबसूरत

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: हेलो, सुन के जाओ।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यह दोस्तों बात करते हैं ओटी प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ पुलकित सम्राट इंटेंस बॉक्सिंग ट्रेनिंग वाली ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी लाए जो कि ग्लोरी नाम से हर किसी जगह चर्चा होती नजर आई। चर्चा तो हुई रिलीज से पहले, रिलीज के बाद शायद ग्लोरी को उतना प्यार मिलता नजर नहीं आया। ट्रेनिंग डेट उनकी बात करी तो पुलकित कहते हैं उन्होंने सोचा था कि वो एक पहले से ही फिट है इसलिए बॉक्सिंग लोग के लिए एकदम एक्सट्रीम ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग शुरू हुई उन्हें एहसास हुआ कि बहुत पीछे थे और एथलीट जैसा बनने के लिए रियल बॉक्सिंग को भी समझना पड़ेगा। हर दिन लगभग 5-6 घंटे की ट्रेनिंग, 2 घंटे बॉक्सिंग, 1 से 1.5 घंटे तक ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपी, नाने कितनी सारी चीजें ग्लोरी के किरदार को समझते थे। ग्लोरी एक हार्ड हिटिंग रूटेड हरियाणवी फ्लेवर वाली बॉक्सिंग मर्डर मिस्ट्री है जिसमें पुलकित एक बॉक्सर के रूप में अपनी पहली बाहरीदार मेहनत वाली भूमिका निभा रहे हैं। अब देखते हैं इस कहानी को जो स्ट्रीम तो किया जा चुका है कितना प्यार मिलने वाला है, कितना पसंद किया जाएगा ग्लोरी। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से 2024 की टॉप पेड एक्ट्रेसेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा। कहा जा रहा है कि एक फिल्म के लगभग 30-40 करोड़ रुपए तक चार्ज करती है। एसएस राजामौली की वाराणसी जैसी बिग पान अंजिया फिल्मों में इसी रेंज की फीस हासिल करती नजर आई। दीपिका पादुकोण, उनकी एक फिल्म की फीस लगभग 25-30 करोड़ रुपए दिखाई पड़ रही है। और जैसे अनु अर्जुन स्टार राका 8822 जैसी बिग कोलैब से उन्हें इसी रेंज में फीस मिली। आलिया भट्ट ये 20-30 करोड़ रुपए की फीस हासिल करती नजर आई है। संजय लोबंसारी लव एंड वॉर में कुछ ऐसा ही होता आया। और बात करें कंगना, कैटरीना, रश्मिका मंदाना और किरण अर्जुन जैसे एक्ट्रेस भी हर फिल्म के लिए लगभग 12-20 करोड़ रुपए ब्रेकडाउन लेते नजर आते हैं। तो देखिए स्टार्स की अगर बात करें, सर की कुछ कहानियां भी आई तो करोड़ों रुपए हाथ में आए, लेकिन हाँ उसके बीच मेहनत भी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन है, डायलॉग्स है, हर चीज़ें। बाकी ऐसी अभी चर्चाएं करता रहूँगा, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यार दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारों से एक बढ़िया बायोपिक के बारे में, माइकल जैक्सन। जी हाँ, माइकल जैक्सन के फैंस की अगर बात की जाए तो माइकल की बायोपिक ओटीटी डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर चर्चा की जाए तो ये थिएटर रिलीज 24 अप्रैल को की गई थी। जब डिजिटल रिलीज की बात की जाए तो जून में माइकल को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाने वाला, फैंस बहुत ज़्यादा उत्सुक रहे जब से इसकी चर्चा थी। जहाँ सिनेमा घरों में कहानी अच्छा प्यार बटोरा, आप देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या धमाल मचाते नजर आएंगे। थिएटर्स में चल रही अच्छी कामयाबी हासिल करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी फैंस कराएगा इंतजार। माइकल जैक्सन एक ऐसे स्टार जो कि इंटरनेशनल स्टार्स हर कोई इनका फैन, इनके डांस का फैन रहा। ऐसी और भी चर्चाएं लाता रहूंगा, उससे पहले एक और कुछ खूबसूरत ट्रैक।

0: सारथी रथ रोको, इधर देखो।
1: क्या हुआ महाराज, कोई इलेक्शन रैली जा रही है क्या?
0: रैली नहीं, ये देखो सड़कों और गलियों में हर जगह कचरा। नगर निगम के इलेक्शंस आ गए हैं, लेकिन सफाई का क्या?
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, वोट तो देना है पर सिर्फ वादों पर नहीं, जो असल में काम करे उन्हीं को।
0: बस यही तो कहना है, वोट उनको दो जो शहर की सफाई को प्रायोरिटी दें, जो सिर्फ अपनी कुर्सी के नहीं गलियों और सड़कों के भी बारे में सोचें।
1: बिल्कुल, इस बार वोट सिर्फ प्रॉमिसेस पर नहीं बल्कि साफ सड़कों और बेहतर शहर के लिए होगा।
2: रेडियो महारानी ला रहा है सिटी की सफाई कैंपेन, अपना वोट उन्हें दें जो सफाई को सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वोट वाइजली, वोट रिस्पॉन्सिबली। शहर हमारा, जिम्मेदारी भी हमारी।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यह हम बात करते दोस्तों आज के सिनेमा के कलाकारों के बारे में। आज है 11 मई। आज की बात की जाए एक ऐसे हीरो के बारे में जिन्होंने हीरो बन के नहीं बल्कि वैसे अपनी पावरफुल करेक्टर से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी एंट्री होते ही सीन का मूड चेंज हो जाता था। कभी ऐसा कि दुश्मन की एंट्री तो कभी ऐसा कि एक फनकार की एंट्री। कौन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ को बताऊंगा। एक ऐसे स्टार जिन्होंने ना जाने कितनी कहानी में अलग अलग किरदारों के साथ हर किसी का मन मोहा। आज बर्थ एनिवर्सरी है उन स्टार की जिन्होंने हर किसी के दिल पे राज किया। कभी अपनी ऐसी एंट्री के बारे में जहाँ एक डेंजर किरदार यानी कि दुश्मनी का किरदार निभाते नजर आए तो कभी फनकार के साथ कौन है बना बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सुना देता हूँ कुछ और बढ़िया बढ़िया से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

हिट्स या अनरिलीज्ड जेम्स। फिल्मी फ्लेवर में आरजे मोनिक आपको सुनाएंगे हर फिल्मी किस्सा ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुल

मुरैया मारे गिल को मुरैया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पटर सिरा कूड़े मुरैया मारे गिल को मुरैया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पटर सिरा कूड़े।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करें सिनेमा के कैलेंडर में आज की तारीख की यानी कि 11 में, जहाँ 11 तारीख को सदाशिव अमरापुरकर का जन्म हुआ। बॉलीवुड में अपने इंटेंस एक्टिंग का मैजिक दिखाते नजर आए। थिएटर से अपनी जर्नी की शुरुआत करी और उसके बाद बॉलीवुड में सिल्वर स्क्रीन पर छाए हुए नजर आए। उनके कुछ अनफॉरगेटेबल फिल्म्स की अगर बात की जाए, सड़क, अर्ध सत्य और इश्क जैसी कहानियों में बात करें उनका किरदार सबसे बेहतरीन था। इस सड़क में उनका महारानी कैरेक्टर बॉलीवुड के मोस्ट पावरफुल नेगेटिव रोल्स में आज भी याद किया जा रहा है। जी हाँ, सदाशिव अमराकर की अगर बात करें तो इन्होंने अपने किरदारों से हर किसी का मन मोहा, लेकिन वो किरदार आज भी हर कोई याद करता है कि यार ऐसे किरदार निभाना कोई आसान बात नहीं है। ऐसी और भी चर्चा करते रहूँगा सिनेमा के कलियारों से, पहले एक और खूबसूरत

के रहेंगे, ये अपनी धुन के हैं पूरे पक्के, कोई न समझे इनको अनारी, चक्के में जाए

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा सुरेंद्र, कितना भी कर ले घर का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर चला आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लैट। आज सिनेमा के कैलेंडर में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक बढ़िया स्टार सदाशिव अमरा पुकर के बारे में बात करेंगी। तो ऑरिजिनली सोशल वर्क बैकग्राउंड से थे और एक्टिंग में अब आने से पहले थिएटर कॉम्पिटिशन में काफी एक्टिव रहते नजर आए। उनकी एक्टिंग का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था कैरेक्टर को रियल बना देना। जब वो कैरेक्टर को जी करके निभाते थे तो लगता था ये कोई कैरेक्टर नहीं है, तो रियल लाइफ कोई इन्हीं के ऊपर बनी स्टोरी है। वो किरदार को इस हिसाब से जी जाते थे कि वो किरदार जब सिल्वर स्क्रीन पर उतरता तो हर कोई देख के दंग रह जाता। थिएटर से मंझे आर्टिस्ट थे तभी इतना बेहतरीन किरदार सबके सामने लाते थे। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं आप सबके लिए करके आता रहूंगा, लेकिन आज नहीं, उस मुलाकात होगी कल के सेम टाइम सेम में करूंगा। रेडियो तब सुन रहे रेडियो।

0: खराब सड़कों से छुटकारा, सुरक्षित सफर हमारा।
1: दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी बिना किसी वजह से डांस कर रही है तो समझ जाइए, सड़क पर गड्ढे अपनी धुन पर नाच रहे हैं। कब तक ये झटके सहेंगे? अब आइए आवाज उठाएं और बदलाव लाएं।

छोटा सा बच्चा स्टेज पर खड़ा है, हाथ में माइक, सामने हजारों लोग, और वो गाना शुरू करता है, क्या हुआ तेरा वादा। लोग हैरान रह जाते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और जिस बच्चे की बात मैं कर रहा था वो बच्चा था सोनू निगम। साल 1973, जुलाई 30 तारीख, फरीदाबाद हरियाणा। घर में म्यूजिक का माहौल था। उनके फादर अगम कुमार निगम खुद एक सिंगर थे। सोनू बचपन से ही अपने फादर के साथ शादियों और स्टेज शोज में गाने जाते थे। जब बच्चे क्रिकेट या गिल्ली डंडा खेलते थे, सोनू स्टेज पर सुरों से खेलते थे। उन्होंने मोहम्मद रफी साहब को अपना आइडल माना। इतनी छोटी सी उम्र में उनकी आवाज में रफी साहब की झलक सुनाई देने लगी थी। लोग कहते थे ये बच्चा बड़ा होके स्टार बनेगा, पर सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना बिल्कुल भी आसान नहीं। टीनेज में ही सोनू और उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। सपना था प्लेबैक सिंगर बनना, लेकिन मुंबई सपनों का शहर कम, स्ट्रगल का शहर ज्यादा होता है। स्टूडियो के चक्कर, म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऑफिस के बाहर घंटों इंतजार, कभी ऑडिशन मिलता कभी सीधा मना। एक वक्त ऐसा भी आया जब काम नहीं मिल रहा था, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी शुरू हो गया था, लेकिन सोनू ने एक बात नहीं छोड़ी और वो थी रियाज, यानी कि प्रैक्टिस। रोज सुबह उठकर सुरों की प्रैक्टिस, क्लासिकल ट्रेनिंग ली उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से। उन्होंने अपनी आवाज को सिर्फ अच्छा नहीं, परफेक्ट बनाने का टारगेट रखा। उन्हें पता था टैलेंट से दरवाजा खुलता है, पर मेहनत से करियर बनता है। और फिर एक मौका आया, और कौन सा था वो मौका, करेंगे इसके बारे में बात। मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

साल 1995, जी टीवी पर एक म्यूजिक शो शुरू हुआ, सारेगामा। होस्ट कौन बना? एक यंग एनर्जेटिक सिंगर, सोनू निगम। ये शो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं सोनू निगम की। और ये सारेगामा का जो शो था, ये सोनू निगम के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। उनकी आवाज में वार्म्थ थी, बात करने का अंदाज दिल से था, और जब कभी शो में गाते थे वो, तो लोग टीवी के सामने रुक जाते। इंडिया ने उन्हें पहचानना शुरू किया, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 1997 फिल्म बॉर्डर का गाना संदेशे आते हैं, जब ये गाना रिलीज हुआ पूरा देश रो पड़ा। फौजियों की जुदाई, माँ का इंतजार, देशभक्ति की भावना, सोनू की आवाज ने इस गाने को सिर्फ सॉन्ग नहीं इमोशन बना दिया। उसके बाद तो जैसे हिट की लाइन लग गई, ये दिल दीवाना, कल हो ना हो, सूरज हुआ मध्यम, अभी मुझ में कहीं, और हर मूड के लिए सोनू निगम रोमांटिक, बिल्कुल राइट, सैड भी, हाई पिच भी, और क्लासिकल टच भी। उन्हें लोग कहने लगे मॉडर्न मोहम्मद रफी। पर सक्सेस के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और कभी कभी कॉन्ट्रोवर्सी भी। तो स्टारडम के साथ कौन सी कॉन्ट्रोवर्सीज ने उन्हें घेरा, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

2000s के दौरान सोनू निगम बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स में से एक बन चुके थे। अवार्ड्स, कॉन्सर्ट्स, वर्ल्ड टूर, सिर्फ उनका नाम ही काफी था। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं सोनू निगम की। सोनू निगम कभी सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर बनकर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने इंडिपेंडेंट एल्बम्स निकाले, दीवाना जो आज भी एवरग्रीन है। उन्होंने कन्नड़, बंगाली, मराठी, तमिल, कई लैंग्वेजेस में गाने गाए। साउथ इंडिया में भी उनका क्रेज बॉलीवुड से कम नहीं है। लेकिन 2017 में एक ट्वीट कंट्रोवर्सी ने उन्हें हेडलाइंस में ला दिया। उन्होंने लाउडस्पीकर्स के इशू पर अपनी राय रखी और सोशल मीडिया पर बहुत डिबेट शुरू हो गई। क्रिटिसिज्म हुआ, सपोर्ट भी मिला, पर एक बात क्लियर थी, सोनू निगम अपनी बात कहने से डरते नहीं। उन्होंने कभी इंडस्ट्री पॉलिटिक्स के सामने झुकना पसंद नहीं किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं सिंगर हूं, किसी का गुलाम नहीं। और ये लाइन उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। और कैसे एक आवाज जो सिर्फ गाती नहीं रूह को छू लेती है, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना, आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

सोनू निगम की सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? उनकी वर्सेटिलिटी। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। सोनू निगम हाई पिच में ये दिल दीवाना ऐसे गाने गाते हैं और फिर अभी मुझ में कहीं जैसे सोलफुल मास्टरपीस भी। उनकी आवाज में दर्द भी है और दुआ भी है। उन्होंने रियलिटी शोज में जज बनकर नए टैलेंट को गाइड किया। हर कंटेस्टेंट को सिर्फ जज नहीं मेंटोर की तरह ट्रीट किया। स्टेज शोज में उनका लाइव सिंगिंग लेवल स्टूडियो से भी बेटर माना जाता है। ऑटो ट्यून के जमाने में भी सोनू निगम लाइव सुर पकड़ते हैं बिना किसी सपोर्ट के। ये ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। उन्होंने कभी सिर्फ फेम के लिए गाना नहीं गाया, वो हर गाने को फील करते हैं। इसीलिए जब वो गाते हैं तो लगता है जैसे कहानी सुना रहे हैं। और कैसे सोनू निगम बने एक लेजेंड, करेंगे इसके बारे में और भी बात मगर इस गाने के बाद। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

आज सोनू निगम सिर्फ एक नाम नहीं है, एक लेगेसी है। 3 डिकेड से ज्यादा का करियर, हजारों गाने, नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं सोनू निगम की। इतने सारे नेशनल अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स के बावजूद आप अगर उनसे कभी भी मिलो तो वो वही सिंपल इंसान मिलेंगे जो 4 साल की उम्र में स्टेज पर खड़ा था। उन्होंने प्रूव कर दिया कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। स्ट्रगल से लेकर सुपरस्टारडम तक ये जो सफर था ना, हमें ये सिखाता है कि टैलेंट इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है पेशेंस। और शायद इसीलिए आज जब भी कोई इमोशनल मोमेंट आता है, बैकग्राउंड में सोनू निगम की आवाज चलती जरूर है, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और वही आवाज है सोनू निगम की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। नंबर है हमारा 9654896896। आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 से मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आप सभी से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। आप सभी के लिए ये गाना।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

इस गाने के साथ एंड यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड विद मी आरजे गीत। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो अनाउंसमेंट्स या बिग प्रॉमिसेस से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, एक किसान के घर से। सोचिए वो गांव जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल का आइडिया ही नहीं था, जहाँ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज दोनों टाइट होती हैं, और एक बच्चा जो 7 साल की उम्र में अपने माता पिता से अलग हो जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ चॉइस बट बिकॉज लाइफ ने उसको पहले ही टेस्ट पे डाल दिया। बदलते सर्कमस्टेंसेस के साथ उस बच्चे को समझ आ गया कि सर्वाइवल और सक्सेस दोनों के बीच एक थिन लाइन होती है, और वो लाइन बनाई जाती है। इंग्लिश नहीं आती मतलब काफी लोग पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्ट्रगल कर लेगा, लेकिन ये स्ट्रगल ही उसका बिगेस्ट टीचर बन जाता है। हाई एंड स्कूल्स, कोचिंग, फैंसी एनवायरमेंट, ये सब इस किड के पास नहीं थे। उसके पास एक चीज थी, खुद की क्यूरियोसिटी और सीखने की नीड। IIT के लिए पोस्टल कोचिंग तक इन्होंने खुद ही अरेंज की, और ये वो फेज था जब लोग कंफर्ट जोन में सेटल होकर बैठते हैं, वो स्ट्रगल से गुजरना भी नहीं चाहते। लेकिन इन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिया कैसे चीजों को एनालाइज किया जाए, अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, और मिस्टेक से कैसे सीखा जाए। और फिर इन्होंने एक स्टार्टअप की तरफ ट्राई किया, एंड दैट फर्स्ट स्टार्टअप फेल भी हो गया था। सब कहते थे ये गलत डिसीजन था, लेकिन उस फेलियर ने उनको कुछ और ही लेसन सिखाया जो आज बहुत एंटरप्रेन्योर्स को मिसिंग लगते हैं, और वही फाउंडेशनल लेसन बैड लेट डिसीजन को शेप करते हैं, इवन जो उसको आज इंडिया के लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर प्लेटफॉर्म तक ले गया। पर अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट को फील कर रहे हैं, नाम, प्रोडक्ट ये सक्सेस अभी रिवील नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज रियलिटी बिफोर फेम, नॉट पॉलिश्ड, नॉट सिंप्लीफाइड, नॉट ट्रू स्ट्रगल। अभी हम यहाँ पर गाना सुनते हैं, गाने के बाद बताऊंगी कैसे ही टर्न जीरो रिसोर्सेज इनटू एन अपॉर्चुनिटी मैप एंड स्टार्टिंग बिल्डिंग समथिंग दैट टुडे सर्व मिलियंस। स्टे विद मी, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ आपके साथ गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ गीत। अगर आप अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं तो बता देती हूँ, आज हम किसी चमकदार सक्सेस स्टोरी की बात नहीं कर रहे, आज हम उस फेज की बात कर रहे हैं जहाँ लाइफ क्वाइटली इंसान को शेप करती है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी एक फार्मर के बेटे की कहानी तक हम पहुँचे थे, एक ऐसा बच्चा जो अपनी बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता से अलग हो गया। अब कहानी आगे बढ़ती है उस फेज में जो बाहर से नहीं दिखता। ये वो साल होते हैं जहाँ स्ट्रगल दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर सब कुछ हैवी हो जाता है। प्रॉब्लम्स पैसे की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है फिट इन करना, नई जगह, नया लगेज और साथ में एक साइलेंट कंपैरिजन। बोलने से पहले सोचना पड़ता है और जब बोलने में डिले होता है तो लोग सुनना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे इंसान बोलना कम करता गया, नॉट बिकॉज आइडियाज नहीं थे बट बिकॉज एक्सप्लेन करना एग्जॉस्टिंग लगने लगा था। और इस फेज में इस कहानी का हीरो क्लासरूम में लाउड नहीं था, ग्रुप डिस्कशन में लीड नहीं करता था बट ऑब्जर्व करता था लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, कौन कैसे आगे बढ़ता है। और बिजनेस अनप्लग में हम जितने भी टाइकून्स की बात कर चुके हैं, मैंने अक्सर एक चीज नोट की है, वो हमेशा ऑब्जर्व करते थे, बोलने पर बिलीव नहीं करते थे। जब आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं होते तो लर्निंग एक ऑप्शन नहीं रहती, वो हैबिट बन जाती है। सेल्फ लर्निंग यहीं से स्टार्ट होती है, बुक्स, नोट्स, प्रैक्टिस, नो शॉर्टकट, नो ग्लैमर। फेलियर भी आए, एफर्ट किए लेकिन आउटकम्स नहीं मिले। और यहाँ फेलियर ड्रामेटिक नहीं होते, बस एक रियलाइजेशन होता है ये अप्रोच काम नहीं कर रही है। यहीं पे एक शिफ्ट होता है लक को ब्लेम करने की बजाय सिस्टम को समझने की कोशिश, वेयर एग्जैक्टली आई एम मिसिंग समथिंग, वेयर आई एम नॉट सीइंग क्लियरली। और यहीं से डेवलप होती है एक हैबिट प्रॉब्लम को रूट से देखने की। अभी मैं आपको नाम नहीं बता रही, ब्रांड का जिक्र भी नहीं, बिकॉज अभी कंपनी नहीं बन रही, सोच बन रही है। क्योंकि अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी और बताऊंगी कि कैसे ये थिंकिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से टकराती है और कैसे वहीं से एक बिजनेस आइडिया जन्म लेता है। सो स्टे विद मी, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का। जो ऐप्स आपके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटो, सबने हमेशा सब मांगे, उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो। और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज, योर अकाउंट इज इन डेंजर, योर पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

वेलकम अगेन, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत। अगर आप मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो अब वो मोमेंट है जहाँ सस्पेंस खत्म होने वाला है। जिस फार्मर के बेटे की हम बात कर रहे थे, जिसने अर्ली एज में सेपरेशन देखा, लगेज बैरियर्स झेले और क्वाइटली ऑब्जर्व करना शुरू किया, वो नाम है ललित केशरे, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ग्रो। यस, ग्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में से एक। बट बिफोर ग्रो बिकम एन ऐप ऑन मिलियंस ऑफ फोन्स, ललित वॉज जस्ट अ बॉय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली वर्क्स। इनका चाइल्डहुड कोई स्मूथ कर्व नहीं था। 7 साल की उम्र, उस एज में जब बच्चे सिर्फ रूटीन फॉलो करते हैं, स्कूल, होम, प्ले, उस एज में ललित अपने पेरेंट्स से अलग हो गए थे। विलेज बैकग्राउंड, नो इंग्लिश मीडियम स्कूल, नो एक्सपोजर। जब आप लगेज नहीं बोल पाते तो कॉन्फिडेंस भी बोरोड होता है, और जब कॉन्फिडेंस बोरोड हो तो आप ज्यादा सुनते हो, कम बोलते हो। ये वीकनेस नहीं थी, ये ट्रेनिंग थी। टाइम के साथ एडुकेशन ने डायरेक्शन ली, IIT रुड़की, देन कॉर्पोरेट एक्सपोजर। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक चीज नोटिस करते गए, ये मनी सबके लिए नहीं बना है, सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, इन्फॉर्मेशनल इमिडिएटिंग है, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ रिच लोगों के लिए रखा गया है। और यहीं से आता है ग्रो का सीड, नॉट हाउ टू अर्न मनी बट हाउ टू सिंप्लीफाई मनी। ग्रो वॉज बिल्ट विद वन कोर थॉट, इफ आई डिडंट अंडरस्टैंड फाइनेंस अर्लियर देयर मस्ट बी अ मिलियन लाइक मी। आज ग्रो सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं है, इट हैज ओवर 40 मिलियन यूजर्स, मैनेज लैक्स ऑफ करोड़ इन एसेट्स एंड ऑपरेट्स विद अ वैल्यूएशन रनिंग इनटू बिलियन ऑफ डॉलर्स। ललित केशरे हिमसेल्फ इंडिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड फाउंडर्स में से गिने जाते हैं। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये नंबर्स इनकी पर्सनैलिटी डिफाइन नहीं करता। इंटरव्यूज देखो, टोन काम है, वर्ड मेजर्ड है, जैसे कोई इंसान अभी भी सोचता है और फिर बोलता है, शायद वही हैबिट जो बचपन में बनी थी। और अभी यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

गाना है फ्रॉम द मूवी छावा और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। अब मैं उस पार्ट में हूँ जब ललित केशरे जो एक छोटे से गांव के किसान के बेटे थे अपनी स्टडीज पूरी करके प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और ये वही मोमेंट है जब ग्रो की कहानी शुरू होती है। IIT में पढ़ते हुए ललित ने ये ऑब्जर्व किया कि इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड्स कितना ज्यादा कंफ्यूज करता है। बैंक्स, ब्रोकर, पेपर वर्क सब इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि नॉर्मल लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं इन्होंने एक बात नोटिस की, अगर यार मुझे ही समझ नहीं आ रहा है तो लाखों लोग कैसे समझेंगे। कैंपस लाइफ में इन्होंने छोटे छोटे साइड प्रोजेक्ट्स किए, अपने दोस्तों को गाइड किया, फीडबैक लिया, स्लोली इनका ऑब्जर्वेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट शार्पन हुआ। ग्रेजुएशन के बाद कॉर्पोरेट जॉब्स में जाकर इन्होंने और डीपली देखा कि इंडिया में इन्वेस्टिंग आसान नहीं है, लोग ऑनलाइन इन्वेस्टिंग से डरते हैं, प्रोसेस लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है। ललित ने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो सिंपल, सेफ और समझने में आसान हो। फिर उन्होंने को फाउंडर हर्ष जैन के साथ मिलकर टीम बनाई। फर्स्ट ऑफिस मिनिमल था, व्हाइट बोर्ड, चाय, ब्रेनस्टॉर्मिंग, टीम स्मॉल थी बट सुपर फोकस्ड, रूल सिंपल, यूजर पहले, प्रोडक्ट सेकंड और सब फास्ट डिसीजन में बिलीव करते थे। फिर इन्होंने ग्रो का फर्स्ट वर्जन बनाया, सिंपल डैशबोर्ड, म्यूचुअल फंड्स और बेसिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं, इंटरफेस क्लीन। सबसे पहले दोस्तों और अर्ली यूजर्स को टेस्ट किया, फीडबैक लिया और प्रोडक्ट इम्प्रूव किए, बग्स फिक्स किए, कंफ्यूजिंग स्टेप्स सिंप्लीफाई किए और धीरे धीरे प्रोडक्ट रेडी हुआ। फंडिंग ट्रिकी थी, इन्वेस्टर हेजिटेट थे क्योंकि स्मॉल टीम, अननोन फाउंडर्स, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स पहले से थे। ललित ने प्रोटोटाइप दिखाया, अर्ली यूजर स्टोरी शेयर की और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से ट्रस्ट बिल्ड किया। फंडिंग सिक्योर होने के बाद प्रोडक्ट का ग्रोथ फेज शुरू हुआ। ऑर्गेनिक ग्रोथ धीरे धीरे आई, रेफरल प्रोग्राम्स, कंटेंट बेस्ड एजुकेशन और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया, ऐप क्रैश फ्री, सिक्योर ट्रांजैक्शंस, कस्टमर सपोर्ट रेडी। ललित पर्सनली मॉनिटर करते थे, फीडबैक लेते थे और टीम हमेशा स्मॉल बट हाईली एफिशिएंट रही। आज ग्रो मिलियन ऑफ यूजर्स के लिए वन स्टेप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, SIP, रिटायरमेंट प्लान्स, वैल्यूएशन बिलियंस में है। वही बच्चा जो गांव में चुपचाप ऑब्जर्व करता था आज यूजर्स के पैसे और डिसीजन मैनेज कर रहा है। काम, मेजर्ड डिसीजन, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट, वही हैबिट चाइल्डहुड से बनी थी और ग्रो की फाउंडेशन बनी। स्टे विद मी, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ।

0: जगह सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: 저게.
1: Yes, you are the best. You're the best.
2: Once again, welcome back. You are listening to Business Unplugged. और मैं पहुंच गई हूं अब उस पॉइंट पर जहां स्टोरी खत्म नहीं होती बल्कि सीख देकर जाती है. ग्रो कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं था. हर फीचर, हर प्रोडक्ट डिसीजन, हर यूजर फीडबैक सब केयरफुली टेस्टेड ट्विक किया गया था और स्टेप बाय स्टेप स्केल हुआ. ललित और उनकी टीम ने सिर्फ आइडिया पर भरोसा नहीं किया बल्कि इन्होंने देखा कि यूजर्स क्या चाहते हैं, क्या समझ पाते हैं और क्या मिस कर देते हैं. और इसी ऑब्जर्वेशन ने प्लेटफॉर्म को सिंपल, रिलायबल और ट्रस्टेड बनाया. आज ग्रो सिर्फ नंबर्स और वैल्यूएशन का गेम नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग कल्चर, ट्रस्ट बिल्डिंग और क्लैरिटी की कहानी है. यूजर्स फील करते हैं कि प्लेटफॉर्म इन्हें समझता है, गाइड करता है और उनके पैसे सेफ हैं. और सबसे खास बात, ये काम, मेजर्ड अप्रोच, डिसिप्लिन और पेशेंस जो स्मॉल डिसीजंस में दिखती थी अब बिलियन डॉलर स्केल तक पहुंच चुकी है. और कहानी हमें क्या सिखाती है, आइडिया सिर्फ थॉट नहीं है, एग्जीक्यूशन और फीडबैक लूप बनाते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक करो, सिंप्लिसिटी चूज करो. ग्रोथ इंस्टेंट नहीं आती बट कंसिस्टेंट थॉटफुल स्टेप चेंज लाते हैं. तो लिसनर्स, ये स्टोरी इंस्पायर करती है लेकिन रियल फील देती है. तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी एक थॉट के साथ, बिग थिंग्स ग्रो क्वाइटली स्टेप बाय स्टेप विद ट्रस्ट एंड क्लैरिटी. तो आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड. कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके.

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: वो देखने में कैसी सी

तलने की जिद ना मसालों का शोर, सफेद सी शान सी, पर पेट और मन दोनों को भर दे, बताऊं मैं कौन। आज इस नई पहेली के साथ फिर से लौट आई हूँ मैं 89.6 FM पर शो कल्चर कारवाली कर। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात करने वाले हैं बेहद टेस्टी डिश के बारे में जो है इडली। वो कहा है कि ना तीखी हो ना चटपटी, फिर भी हर दिल को भा जाए। इडली शायद इसलिए पसंद आती है क्योंकि ये ज्यादा कुछ बनने की कोशिश नहीं करती, इतनी सिंपल है इडली। लेकिन सवाल ये है कि क्या इडली हमेशा से साउथ

वैसे तो आज इडली को हम साउथ इंडिया की पहचान कहते हैं, पर इसका इतिहास थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। कहा जाता है कि 19th टू 20th सेंचुरी के दौरान कर्नाटका के होयसल राज्य में एक डिश का जिक्र मिलता है जिसका नाम है इडली की। और ये डिश बेहद सिंपल स्टीम्ड होती थी, फर्मेंटेड होती थी और बिना मसालों की, बिल्कुल आज की इडली जैसे। और साथ ही इसका इंडोनेशियन कनेक्शन भी देखा जाता है। तो बस इसी कनेक्शन को आगे जानने के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से, वो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

इडली के बारे में। तो आज का इडली का जायका हमें ले आया इंडोनेशिया के कनेक्शन तक। कहा जाता है कि कुछ हिस्टोरियंस ने कहा है इडली का आइडिया शायद इंडोनेशिया से आया होगा, क्योंकि वहाँ स्टीम्ड राइस केक्स पहले से ही बनते थे, और जब साउथ इंडियन ट्रेडर्स इंडोनेशिया गए तो वहाँ से फर्मेंटेशन का तरीका अपने साथ ले आए। लेकिन आज भी आखिर सच क्या है, ये डिबेट का

कहा है कि सफर चाहे समंदर का हो या समय का, जो अपना हो जाए उसकी ओरिजिन ज्यादा मायने रखती है। कल्चर कारवा में इटली का इंडोनेशिया वाला कनेक्शन तो बताया, लेकिन फर्मेंटेशन इटली की जान कैसे बनी, इस बारे में बात करेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज कल्चर कारवा का ये सफर जा रहा है इडली के इतिहास की तरफ। इंडोनेशिया का कनेक्शन तो पता लगा लिया, लेकिन फर्मेंटेशन इडली की

0: इडली बनाने के लिए चावल और उड़द की दाल जब मिलकर फर्मेंटेशन से गुजरती है तो सिर्फ टेस्ट नहीं बदलता, न्यूट्रिशन भी बढ़ जाता है। इसलिए इडली सुबह ब्रेकफास्ट में हर घर में खाई जाती है, क्योंकि ये बहुत लाइट होती है, हेल्दी होती है और इजीली डाइजेस्टेबल होती है।
1: डोसा, इडली, सांभर, चटनी चटनी, डोसा, इडली, सांभर, चटनी चटनी, तेडी पुडिचे वाटला, फाइन वन।
0: शायद इसलिए आयुर्वेदा का

सोमवार को खिचड़ी और हर सुबह को इडली दी जाती है। वो कहा है कि जो पेट को परेशान ना करे वही सच्चा स्वाद होता है। इडली सिर्फ खाना नहीं, एक शांत सुबह का वादा होता है। ये छोटी सी गोल इडली इंडोनेशिया से आयुर्वेदा तक तो पहुंची, लेकिन इडली का सफर इंडिया में कैसे शुरू हुआ इस बारे में भी बात करते हैं। कहा जाता है कि चेन्नई से बेंगलोर और फिर हैदराबाद से कोची और फिर पूरे देश में इडली ने धीरे धीरे सफर किया। और अगर आज देखा जाए तो आज इडली मिलती है स्ट्रीट स्टॉल्स पर, फाइव स्टार होटल्स में, ऑफिस टिफिन में, हॉस्पिटल डाइट में, क्योंकि कहा जाता है ये सिंपल सी इडली हर जगह फिट हो जाती है। इंडिया सफर के बारे में तो बात की, अब धीरे धीरे जानेंगे इडली के अवतार्स के बारे में। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
3: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
2: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे अंशी और कल्चर कारवा का आज का सफर घूम रहा है इडली के चारों ओर। इडली के बारे में बात की, लेकिन इडली के अवतार्स के बारे में भी बात करेंगे। इडली की बहुत सारी वैरायटी इंडिया में मिलती है, जिसमें से एक है रवा इडली, फिर दूसरी है बटर इडली, और इसी के साथ एक और इडली आती है जिसका नाम है कांचीपुरम इडली, फिर आती है फायर्ड इडली और साथ ही आती है चॉकलेट इडली। यानी कि इडली शायद दुनिया का सबसे शांत खाना है, जिसे लोग हर बार नया बना देते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इतना ही नहीं, अगर इससे जुड़े ट्रिविया के बारे में बात करें तो कहा जाता है इडली दुनिया की हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट में से एक मानी जाती है। और इतना ही नहीं, नासा के डाइट स्टडीज में फर्मेंटेड फूड का जिक्र आता है, और शायद यही रीजन है कि इडली के लिए इतना प्यार देखकर वर्ल्ड इडली डे भी सेलिब्रेट किया जाता है

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
1: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

एक बात दिल पर हाथ रखकर बोल दो कि आप लोगों को भी मंडे पसंद नहीं है मेरी तरह। तो पसंद नहीं है तो क्या हो गया, आप तो चले भी गया मंडे। 5:05 और ऑलमोस्ट 12 सेकंड मेरी स्टूडियो क्लॉक में, और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हो आप सब? सुबह से हो गई शाम, सुबह ऐसा हो रखा था मुझे लगा बादल आ गए हैं और अब तो बारिश होगी ही होगी, बट अभी देखो बारिश के बारे में करेंगे बात। एंड अब अगले 3 घंटों तक मैं आ गया हूँ तो खूब सारी मस्ती तो वैसे भी होने वाली है। तो ये मेरा शो होता है बिल्कुल वर्सेटाइल शो, जिसमें सुबह से लेके शाम तक, दिल्ली से लेके फरीदाबाद तक और दुनिया भर की अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर आता हूँ, भले ही टेक्नोलॉजी हो या फिर हो स्पोर्ट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं नए कोरोना वायरस के बारे में। नया कोरोना वायरस ढूंढ लिया है, क्यों ढूंढा है मुझे समझ नहीं आया, बट ढूंढ लिया है। और इसके अलावा आपको बताऊँ एक हंता वायरस जिसके बारे में पिछले हफ्ते बात कर रहा था, तो ये दोनों बड़ा ही तंग कर रहे हैं, मतलब मेंटली बड़ा परेशान कर रहे हैं। करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात, और चोरी की बात करूंगा आज मैं। नहीं, मैं खुद से चोरी नहीं करूंगा, ना मैं चोरी करने का कुछ आइडिया दूंगा, बट चोरों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि एक एक्सप्रेसवे बना है रिसेंटली, उससे भी कुछ कुछ चीज़ें चोरी हुई है। क्या क्या चीज़ें चोरी हुई है, करेंगे इसके बारे में बात। एंड चोर ने चोरी करी, फिर उसके बाद बोल दिया एक लेटर में, मतलब एक लेटर लिख के चला गया और लिखा हुआ है लेटर में कि सारा के सारा पैसा वापस कर दूंगा ब्याज समेत। ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता ना ऐसा कहीं पर भी। मगर उसके बाद वो चोर पकड़ा भी गया। कैसे पकड़ा गया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये ऑल टोटल सारी बातें करने वाला हूं मैं अगले 3 घंटों में। तो अगर आप लोगों को इसी बीच मुझसे कोई भी बातें करनी है तो जी नंबर है मेरा 9654896896। फटाफट कॉल उठाइए, मतलब फोन उठाइए और कॉल लगाइए इस नंबर पे। अगर कॉल उठाने में देरी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ सकते हैं। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक प्यारा सा गाना आज की शाम की शुरुआत में।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

मौसम विभाग का कहना है कि आज शाम से लेकर मतलब कि अभी से थोड़ी देर बाद से लेकर परसों तक वेंसडे तक अच्छा मौसम रहेगा। और ये तो मुझे आज सुबह लग रहा था, बट ऐसा लगा नहीं फिर उसके बाद, क्योंकि धूप आ गई थी भयंकर वाली और गाड़ी ऐसी गर्म होती है ना धूप में जैसे कि पता नहीं क्या प्रेशर कुक करो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ 5:20 मेरी स्टूडियो क्लॉक में। और जो मैं बात कर रहा हूं वेदर की, वो इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मौसम का ना समझ नहीं आ रहा है। किसी दिन गर्मी हो जा रही है, फिर लोग कह रहे हैं सुपर एल नीनो आने वाला है इस साल, आ गया है मतलब, और इसकी वजह से गर्मी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो नौ तपा वाली गर्मी रहेगी। हाँ, नौ तपा मीन्स नौ दिन तक तपने वाली गर्मी रहती है। और उसमें मैंने देखा है कुछ लोग भाई तपस्या भी करते हैं उस गर्मी में। हाँ, मैंने देखा है, इनफैक्ट ये सूरजकुंड फरीदाबाद रोड, मतलब सूरजकुंड नहीं, माफ कीजिए, गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे मैंने देखा है। चलिए इन सब चीज़ों को भी साइड में रखते हैं, बात करते हैं वेदर की। तो फरीदाबाद में वेदर कुछ ऐसा रहने वाला है कि आने वाले दो दिन में आपको थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी मौसम में, और हो सकता है अनएक्सपेक्टेड बारिश भी हो जाए। बारिश के आसार है आज रात को, कल भी हो सकती है सुबह सुबह, और हो सकता है कि परसों हो जाए। तो बस इसके बाद फिर आप लोगों को कम से कम एक महीने तक तो बारिश देखने को मिलेगी ही नहीं, ये बात मान के ले लीजिए। तो चलिए अभी रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए बस एक बात बोलना चाहूँगा कि अब गर्मी प्रचंड वाली पड़ने वाली है, तो जितना हो सके उतना घर के अंदर ही रहिए या फिर अपने ऑफिस के अंदर ही रहिए। और वैसे भी कल तो मोदी जी ने भी कुछ बोल दिया है, मोदी जी ने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम करो। क्यों करो, मैं बताऊंगा आप सभी को क्या बोला है उन्होंने एग्जैक्टली, करेंगे इसके बारे में भी बात मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर एक गाना चला रहा हूँ। वापस आकर बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम कल्चर की, जो कि मोदी जी ने भी आग्रह कराया लोगों को कि वर्क फ्रॉम होम करो। कोई मेरे बॉस को भी बता दो जाके कि मोदी जी ने क्या

0: सदा सुरक्षित रहो। रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रह।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

अनस्टॉपेबल तो वो है जो बिना वजह अपनी गाड़ी बाइक में पेट्रोल डलाकर इधर से उधर घूमते हैं और फिर लोगों को परेशान करते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और आप लोग सोच रहे हो कि क्या बात कर रहा है तू, मैं वही बात कर रहा हूं जिससे आप लोग भी परेशान हैं। और बस इतना कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने बोला है कि ऐसा है, आप लोग प्लीज प्लीज प्लीज फ्यूल बचाइए और वर्क फ्रॉम होम करिए। तो भाई ने बोला करने का तो करने का, मतलब ये डायलॉग है। मोदी जी ने कहा है करने का तो क्यों कहा है ये भी बताता हूँ आपको, ताकि जो जितने भी फ्यूल है और एनर्जी रिसोर्सेज है उसको कम यूज़ करें। ताकि अभी देखो आप सभी को पता है कि मिडिल ईस्ट में क्या हालात हैं और हमारे पास इंडिया के पास कोई भी तेल का कुआं नहीं है अपना खुद का, तो हमें थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। उन्होंने बोला पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, कार पूल करो और हो सकता है तो वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दीजिए। और वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोदी जी ने साथ में एक और बात बोली थी जिसमें बोला गया था कि इम्पोर्ट्स को लिमिटेड कर दो, जितना भी आप लोग बाहर से चीज़ें खरीदते हो उसको कम कर दो, फॉरेन ट्रिप्स अभी के लिए पोस्टपोन कर दीजिए अपनी, और डेस्टिनेशन वेडिंग बिल्कुल अभी बंद कर दो। क्योंकि काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर यूरोप चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। खैर हम लोग तो नहीं जाते, हम तो अपने घर के पास वाले कम्युनिटी सेंटर में जाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उसको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। हाँ, और वोकल फॉर लोकल को फिर से एक बार बढ़ावा दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को स्वदेशी बनना पड़ेगा, स्वदेशी तो हम लोग हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा हम लोगों को। जो हमारे देश में बन रहा है ना, उन्हीं को अगर हम लोग फिर से यूज करेंगे तो बहुत सारी चेंजेस हमारे इंडिया की इकोनॉमी में पड़ेगा। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, करेंगे खूब सारी बात और भी। और हाँ, इसके साथ साथ एक और बात बोलना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि फॉरेन ट्रिप्स की मैंने जब बात करी तो इंडिया के 500 रुपये की वैल्यू क्या होगी बाहर विदेशों में, चलो करेंगे इसके बारे में बात मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर यही।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचें, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

व्हाट डू यू थिंक कि 500 रुपए इनफ है क्या बाहर जाने के लिए? बाहर मीन्स घर से बाहर नहीं, विदेशों में जाने के लिए। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड 500 रुपए आप सोच रहे गौरव तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैं जस्ट रिसर्च कर रहा था। तो रिसर्च करते करते पता चला कि इंडिया के 500 रुपए वियतनाम में जाते ही 140,000 वियतनामी डोंग बन जाते हैं, बट उसकी वैल्यू उतनी रहती जितनी 500 रुपए की होती है। तो आप सुनो, इंडिया के 500 रुपए कहाँ कहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और अगर हम लोग इंडोनेशिया जाए 500 रुपए लेकर, तो वो बन जाएगा 92,000 इंडोनेशिया रुपया। इंडोनेशिया में भी रुपया चलता है, बट उनका अपना रुपया है, इंडिया का अपना रुपया है। और बता दूं आपको, कंबोडिया अगर आप जा रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो इंडिया के 500 रुपए कंबोडिया जाकर बन जाते हैं ऑलमोस्ट 21,000 रुपए। तो ठीक है यार, वहाँ जाना भी अच्छा है। और कुछ लोग तो थाईलैंड जाते हैं। थाईलैंड छोड़िए यार, अभी अभी और भी कंट्रीज है, जैसे कि उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में इंडिया के 500 रुपए बन जाते हैं 64,100 रुपए। बढ़िया है ये भी। और बता दूं आपको, उज़्बेकिस्तान में यूज होता है उज़्बेकिस्तानी सोम। अब बात करते हैं अपने साउथ वाले मुल्क की, मतलब श्रीलंका की बात करूंगा मैं। और श्रीलंका में इंडिया के 500 रुपए बन जाते हैं 1,700 श्रीलंकाई रुपया। और लाओस अगर आप जाने की प्लान कर रहे हो, तो लाओस में इंडिया के 500 रुपए बन जाते हैं 1,15,000 लाओटियन किप। ये टोटल बता दिया मैंने आपको, बट द थिंग इज वो वैल्यू उतनी ही रहती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे इंडिया का 500 रुपए है, तो वो वहां पर भी उतनी ही वैल्यू रहेगी। मान लेते हैं अगर हम लोग बात करें वियतनाम की, वियतनाम में इंडिया के 500 रुपए 1,40,000 हो जाते हैं, बट आपको उतना ही सामान मिलेगा जितना 500 रुपए मिलता है। तो चलिए, आप लोग अगर कहीं प्लान कर रहे हैं तो अभी इसको पोस्टपोन कर दीजिएगा 1 साल तक। मोदी जी ने बोला है ना कि कहीं विदेश यात्रा भी मत करिए, देश के लिए फायदा है। तो चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, एक वीकेंड वाला गाना आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6।

0: बकवास है।
1: हाय श्याम, जब तुम घर लौटते हो माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: हाँ तो अर्ज किया है।
5: आहो, अर्ज होता है अर्ज।
4: कर रहे हैं आप, सुनो तो
5: इरशाद।
4: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
5: तुम्हारे नंबर पे?
4: हाँ जी।
5: अच्छा,
4: और उन्होंने पूछा क्या?
5: क्या पूछा?
4: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
5: क्या बात कर रहे हो?
4: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
5: अच्छा,
4: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
5: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
4: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
5: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
4: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
5: बाय।
4: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
5: बाय बाय। हाँ हाँ यार।
6: जिन मनुष्यों को तो दानों से बचा रहा है, कलयुग में वे स्वयं दानों से कहीं अधिक पापी हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पाप धरती के सबसे बड़े तालाब को

0: हूँ जो चाहे वो कर सकता हूँ। सब छोड़ के सारे बुरे कर्म लो मानवता पर चलता हूँ। क्यों इंतजार करे हम सब श्री कृष्ण के अवतार का। सब मिलकर हम निर्माण करे नव सतयुग से समाज का। जहाँ पशु को पूजा जाता हो और मांस कोई ना खाता हो। हर मानव में मानवता हो ना मानवता दिखावा हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

अभी घूमने फिरने की बातें हो रही थी और उसी के बीच में मैंने बताया आपको कि मोदी जी ने बोला है कि विदेश में मत जाओ, साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम करो। तो मुझे ना अचानक से याद आ गया COVID-19 वाला वो साल 2020। ऐसा लगता अभी गया है। टाइम बहुत तेजी से बीता उसके बाद से। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड वंडा आप सभी के साथ। और बता दूं आपको कि कोविड में लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ गया और बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। और जैसे ही बढ़ा फिर उसके बाद लोगों ने इसको अडेप्ट कर लिया, लोगों ने बोला वर्क फ्रॉम होम ज्यादा अच्छा है और कुछ कुछ केसेस में अच्छा है, कुछ कुछ केसेस में नहीं है। बट अभी मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि फिर से कोरोना वायरस का एक नया वर्जन मिल गया है। क्यों मिला है पहले तो ये सवाल मेरे मन में आया है। और बता दूं आपको, वैज्ञानिकों ने खोजा है नया कोरोना वायरस और ये इंसानों को संक्रमित कर सकता है। अब ये वैज्ञानिक कहाँ होंगे आप सोचो, इंडिया में तो होंगे नहीं। इंडिया के वैज्ञानिक ऐसे वायरसेस नहीं ढूंढते, वो इलाज ढूंढते हैं, वैक्सीन बनाते हैं सबसे पहले। और बता दूं आपको, ये वैज्ञानिक थे थाईलैंड में। थाईलैंड में इन्होंने चमगादड़ों में एक नया कोरोना वायरस की पहचान करी है जो इंसानों तक भी फैल सकता है। देखो मैं एक सवाल सोच रहा था, मेरे मन में आया कि ये अभी खोजा है इन्होंने, इसका मतलब तो ये है ना ये पहले से ही था बट इनको अब मिला है, मतलब साइंटिस्ट को अब मिला है। तो भाई हो सकता है ना कि इतने सालों से जब ट्रांसमिट नहीं हुआ इंसानों में तो आगे भी नहीं होगा। हम लोग इस बात को लेके चलेंगे और बाय चांस मतलब एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि बाय चांस भी अगर कोई इंसान कोरोना से अब संक्रमित होता भी है इस नए वाले वायरस से तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम सबको वैक्सीन लग चुकी है। और क्यों? क्योंकि हम सत्संग जाते हैं। मेरे को वो मीम याद आ गया था। तो चलिए अभी रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, वापस आकर वायरस की बात करते हैं और उस वायरस की बात करते हैं जिसने सबको डराया हुआ है। नाम है उसका हंता वायरस। क्या है ये, करेंगे इसके बारे में बात, मगर उससे पहले आप सभी के लिए तलविंदर की आवाज में ये गाना आप सभी के लिए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इशान,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे

0: भाई।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
2: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: यो बॉयज, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, शूट सॉन्ग।

हर जगह हर इंसान के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या हंता वायरस फिर से लॉकडाउन लगवा सकता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। लास्ट वीक हंता वायरस के बारे में बहुत बातें हुई, मैंने भी इनफैक्ट फ्राइडे को आप सभी के साथ बात करी थी। फिर मैंने सोचा मंडे को इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत और करनी जरूरी है। देखो, चूहों से फैलता है ये हंता वायरस और इंसानों में भी फैल रहा है। 40 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं जो कि पाए गए हैं और ट्रांसमिट हो रहा है एक इंसान से दूसरे इंसान पर। बट अभी यहाँ पर एक मेरे मन में सिंपल सी चीज़ आई और वो ये है कि क्या हंता वायरस की वजह से लॉकडाउन लगेगा। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट का ये कहना है ठीक है अभी हंता वायरस आया तो है बट आपको ज़्यादा तंग करेगा नहीं। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इस वायरस के बारे में और भी ज़्यादा, तो पता चला कि कुछ साल पहले, आज से करीब 5 साल पहले गायब हो गई थी 2 शीशियाँ हाँ हंता वायरस की। शीशियाँ तो वैसे बोलूँ, टेस्ट ट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अंदर ना सैंपल रखते हैं ताकि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो उसके ऊपर रिसर्च कर सके और फिर उसके बाद उसका एक एंटीडोट बना सके या फिर कह सकते हैं एक वैक्सीन बना सके। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में एक लैब में रखी हुई थी, 2021 में गायब हो गई थी। और इसके साथ साथ 300 और वायरस के सैंपल्स थे जो कि गायब हो गई थी। अब बता दूं आपको ये हुआ क्या था। एक फ्रीज़र होता है, फ्रीज़र के अंदर ये सारे सैंपल्स रखे जाते हैं। तो जैसे ही फ्रीज़र को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा था तो पूरा जो कंटेनर था ना वही गायब हो गया था। अब कंटेनर गायब हुआ, उसके अंदर जो वायरस हैं वो भी गायब हुए और फिर मेरे ख्याल से ख़राब हो गए होंगे वो, क्योंकि देखो फैलना होता अब तक फैल चुका होता, नहीं फैला ना। बट हंता वायरस अब आया है तो लोगों में डर का माहौल है। बट वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा, बट अगर चढ़ गया इंसान के अंदर तब दिक्कत देगा। तो देखते हैं अभी आने वाले टाइम में क्या होता है, क्या और रिसर्च आती है इसके ऊपर। मैं तो बस यही प्रे करूँगा कि ऐसा कुछ भी ना हो, बस भले ही लॉकडाउन लग जाए, 1 महीने का लगे या फिर 10 दिन का लगे, पोल्यूशन कम हो जाएगा और थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, और जहाँ मैंने इन वायरस के बारे में बात करी है वहीं पर कुछ वायरस की बात और भी करूंगा, जिन्हें कहते हैं चोर। कौन है वो चोर वायरस, करेंगे इनके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

मार्केट में होते हैं बहुत सारे वायरस। नहीं, एक तो आसमान में हवा में घुलने वाले वायरस होते हैं, दूसरे वायरस होते हैं हमारे बीच रहने वाले वो लोग जो उन्हें कहते हैं चोर, जो चोरी करने से बाज नहीं आते। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं, देखो जितने भी वायरस फैल रहे हैं ना, वायरस में मतलब ये चोर जितने फैल रहे हैं ना, उन्होंने अभी क्या किया रिसेंटली, एक नया हाईवे एक्सप्रेसवे बोलूंगा मैं, देहरादून एक्सप्रेसवे, उसमें जो टॉयलेट लगे थे उसको सिर्फ और सिर्फ 20-25 दिन के अंदर कबाड़ बना दिया। फ्लश टैंक चुरा के ले गए, नलके तोड़ के ले गए उधर से, आई डोंट नो और क्या क्या ले जाएंगे, इवन सोप डिस्पेंसर तोड़ के ले गए। ऐसा भी करते हैं लोग, तो इनको चोर ना कहें तो और क्या कहें, क्योंकि वहां पर सोप डिस्पेंसर लगा था और फिर उसके साथ साथ टिश्यू डिस्पेंसर भी लगा हुआ था, बट सब कुछ वहां से गायब है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर लोग कमेंट यही कर रहे हैं कि देखो हम इंडियंस ऐसी सुविधा डिजर्व नहीं करते। क्या सच में ऐसा है? नहीं ना, हम लोग डिजर्व करते हैं, बट हमारे बीच रहने वाले ये जो वायरस है, आई मीन जितने भी चोर हैं, ये लोग हैं जो डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे, और अगर डेवलपमेंट होती भी है तो ये उसको टिकने नहीं दे रहे। क्योंकि जो ये वीडियो है, जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, उन्होंने फर्स्ट डे पर भी वीडियो बनाई थी और उन्होंने बहुत तारीफ करी थी कि टॉयलेट इतने साफ सुथरे हैं, बट आज की डेट में टॉयलेट से फ्लश टैंक तक गायब है। तो इनके बारे में क्या कह सकते हैं? चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए एक गाना जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके,
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

शरीर है, दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं, एक तो है सीधा बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है। मेरी हरकतों से बस पता चले कब कौन सा मुझे

साथ संसार का ना पर बुद्धि को एकांत करा मैं पढ़ता गया मैं पढ़ता गया मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा मैं शून्य बना मैं शांत बना डिवोइस मैं देवांश बना मैं लिखता गया अब कोई लगाम विचार पे ना।

अरे ब्याज समेत आपके पैसे वापस कर दूंगा। ऐसा भी मामला आता है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। शाम इतनी हो गई है और मैं ऐसे ही जस्ट स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने खबर आई और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर तो करनी चाहिए। देखो, सीतापुर नाम की जगह यूपी में, वहां पर एक चोर आया दुकान के अंदर। दुकान के अंदर से 90,000 रुपए का सामान चुरा के ले गया और उधर एक चिट्ठी छोड़ गया। चिट्ठी में उसने लिखा पड़ा है, देखो 3 साल में 10% ब्याज सहित आपके पैसे लौटाऊंगा, और 10% ब्याज होता है 27,000, और मैं आपके सारे के सारे पैसे लौटा दूंगा, और 1,17,000 रुपये मैं आपको लौटाऊंगा, और ये अच्छा काम है, मगर मेरी बहुत ज़्यादा कठिन समय चल रहा है, मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है, ये सब लिख के वो एक लेटर पे चला गया वहाँ से। और फिर उसके बाद वापस आया, क्यों? क्योंकि वो जो सामान लेके गया था ना, वो गलत था। जल्दबाजी में वो गलत सामान ले गया, और जैसे ही वो सामान को वापस रखने आया दुकान पर, तो लोगों ने उसको पकड़ लिया। क्योंकि देखो, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो इस दुकानदार ने अगले दिन से अपनी दुकान पर पहरेदारी करनी शुरू कर दी थी। और जैसे ही ये इंसान वापस आया सामान रखने के लिए, इसको पकड़ लिया और पकड़ा दिया पुलिस के हाथों। अब ये बोल रहा है, भाई पैसे तो वापस करने वाला था ना, तुमने ऐसा क्यों किया? तो चलिए, इसमें आप लोग बताइए, क्या दुकानदार ने सही किया या नहीं? नंबर है जी 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना हर्ष लिखारी की आवाज में, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
1: इरशाद,
0: अरे आगे खाली हो जाएगी।
1: क्या
0: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
1: कौन है?
0: रोडवेज वाले।
1: ओके,
0: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
1: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
0: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ
0: आगे सुनो।
1: सुनाओ।
0: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
1: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
0: अरे एक गिलास तो पीती जा, सुन।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक यूआई का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब देना आप लोगों को। और सवाल ये है कि अगर आपको कहीं पर 67,000 रुपीस पड़े हुए मिल जाए तो आप क्या करोगे? देखो मन में लड्डू फूटा क्योंकि मेरे मन में भी आया था ये कि अगर मुझे ऐसे पैसे पड़े हुए मिल जाते तो मैं क्या करता। मैं पहले देखता इसका कोई ओनर तो नहीं है आसपास, सबसे पहले तो ये देखता कि कोई देख तो नहीं रहा, और चलो उठा भी लिया, और अगर मान लेते मुझे वॉलेट के अंदर मिलते तो वॉलेट के अंदर तो कोई ना कोई कॉन्टैक्ट कार्ड होता तो मैं ट्राई करता वापस दे देता, बस ये तो करता मैं। बट यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर एक आदमी को ऑलमोस्ट 67,400 रुपीस पड़े हुए मिले हैं और उसने वापस करने की कोशिश की। उसने कैसे वापस किया मैं आपको बता दूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो नोट की बंडल मिला उसको, उसमें एक पेपर का टुकड़ा था और उस पर नंबर लिखा हुआ था, और जैसे ही इस बंदे ने उस पर कॉल करी और बोला आप इधर आ जाइए पैसे लेने के लिए, और वो इंसान पैसे वापस लेने आया और इनफैक्ट वहाँ पर आके पैसे गिन रहा है। यार अगर एक बात बताओ, अगर इंसान को चोरी करनी होती तो वो वापस तो कर ही देता ना, मतलब वो वापस क्यों करता, मतलब अपने साथ लेके चले जाता। बट इस बंदे ने पैसे वापस लौटाए और फिर इसको इनाम में मिले हैं 400 रुपये। इसने कहा भाई मुझे 400 रुपये भी नहीं चाहिए, आपने जो ये हरकत करी है मेरे सामने पैसे गिनने की, इससे मुझे दुख हुआ है। बट ये मुझे लगता है हर इंसान करेगा। लाइक अगर मेरे पैसे कोई अगर बाई चांस गिरते हैं और अगर कोई मुझे लौटाता है तो मैं भी तो गिनूंगा ना उस पैसे को, है कि नहीं। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, बातें तो ऐसी चलती रहेगी। और वापस अगर बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, क्योंकि लोग कह रहे हैं उन्होंने एलियंस का राज खोल दिया है, कैसे बताऊंगा मगर इस गाने के बाद।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: Thank you.

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: दिन में
1: एलियंस की स्टोरी
0: बकवास है।
1: बिल्कुल हो सकता है बकवास है, बट कुछ लोग कह रहे हैं सच भी है, क्योंकि जितनी भी एलियंस रिलेटेड फाइल्स थी वो अब सब पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई है। किसने? नासा ने। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से बताया है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और मेरे मन में एक सवाल आया कि ये सारे एलियंस अमेरिका ही क्यों जाते हैं? नहीं, आप लोगों ने फिल्में देखी होंगी, उसमें अमेरिका में ही हमला कर रहे हैं एलियंस। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और भी चीज़ों के बारे में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से ही बोला है कि एलियंस के राज हैं, ये खुद देख लो। जो पहले कभी भी फाइल जारी नहीं की गई थी वो सारी फाइल जारी की गई है, और उसमें काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल शॉकिंग है। लाइक एक आसमान में कैप्सूल सा उड़ रहा है, बहुत बड़ा कैप्सूल है। मतलब आप इमेजिन करो, ये जो नाहरसिंह स्टेडियम है ना, इसके बराबर बराबर का एक कैप्सूल होगा जो कि हवा में उड़ रहा है, और एक बहुत ही ब्राइट रोशनी आ रही है और इसकी फ़ोटो क्लिक की गई है। और ये फ़ोटो बताई जा रही है 1950s की। तो उस टाइम मतलब जितने भी UFO थे, जितनी भी चीज़ें थी जो एलियंस रिलेटेड चीज़ें थी, वो सारी की सारी पब्लिक कर दी गई है। अगर आप भी वो सब चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हो war.gov/UFO पर। इस वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको सारे न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे, फ़ोटोज़ मिल जाएगी, जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मिल जाएंगे, और जितने भी अनसॉल्व मामले हैं ना वो सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाएगी। और बता दूं आपको, ये कभी भी आज तक पब्लिक नहीं की गई थी, बट अब पब्लिक कर दी गई है। आई डोंट नो व्हाई। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का बेटा टाइम ट्रैवलर है। कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, बताऊंगा मगर इस गाने के बाद। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

टाइम ट्रैवलर है, तो आप लोग विश्वास करोगे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और ये बात ना मैंने खुद से अपने मन से नहीं बनाई है, ये बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का बेटा जो है बैरन ट्रंप वो एक टाइम ट्रैवलर है। एक्चुअली मैं टाइम ट्रैवलर की थ्योरी एक बुक से जुड़ी हुई है, और 19th सेंचुरी में एक लेखक थे जिनका नाम था इंगरसोल। भाई इस बंदे ने एक बुक लिखी थी, और बुक में एक कहानी थी जिसमें कहानी में

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: क्या भी पॉप कल्चर।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

काम थोड़ा सा डीले चल रहा था, बट मैं ये प्रे करूंगा कि आने वाले टाइम में फरीदाबाद साफ सुथरा और स्वच्छ बन जाए, क्योंकि जितना साफ फरीदाबाद रहेगा उतना ही स्वस्थ फरीदाबाद भी रहेगा। सफाई से ही स्वस्थ रहते हैं इंसान। तो चलिए इसी के साथ साथ बस एक ही मैसेज आप लोगों को दूंगा कि प्लीज अपने घर के आसपास कूड़ा ना जमा होने दें, उसको तुरंत साफ करवा दें। एंड इसी के साथ साथ रेडियो महारानी से मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आप सभी से फिर से कल शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि वापस आएगी गीत विद इश्कबाजियां, प्यार भरी बातें लेकर आएगी आप सभी के लिए। मगर उससे पहले एक गाना चला देता हूँ, एक का डीनो जेम्स और बादशाह की आवाज में, मेरा फेवरेट गाना, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, बहुत बार चला चुका हूँ, आज फिर चला रहा हूँ। इस गाने का नाम है वो, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी अभी आपने सुना है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, प्यार आता है। और सच बताऊं तो प्यार की सबसे प्यारी बात यही है जो बिना बुलाए आ ही जाता है, कभी किसी की हंसी में, कभी किसी की याद में, और कभी कभी किसी अजनबी की आंखों में बस आ जाता है। रेडियो महारानी से मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और शो ले आई हूँ आपके लिए इश्क बाजियां। और ये शो उन दिलों के लिए है जिनमें अब भी मोहब्बत की गूंज बाकी है। और आज का जो ये पहला आर है वो स्पेशल है इश्क शायराना, जहाँ मैं बात करती हूँ उन शायरों की जिन्होंने मोहब्बत को, जुदाई को और रिश्तों की उलझनों को इतने खूबसूरत अल्फाज दिए कि वो हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गए। और आज की रात मैं आपको लेकर चलूंगी फैज अहमद फैज की दुनिया में, जिनकी शायरी मोहब्बत में भी है और हकीकत में भी, वो अल्फाज जो आज भी उतने ही सच्चे लगते हैं जितने सालों पहले लिखे गए थे। और सोचिए ये बातें आज की लाइफ में कितनी जुड़ी हुई हैं। हमारी जेनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है ना, दिल में बहुत कुछ होता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। व्हाट्सएप पर ब्लू टिक आ जाता है, इंस्टा पर ऑनलाइन दिखते हैं, पर दिल की बात टाइप करने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ पर शायर हमारी मदद करते हैं क्योंकि वो वही सब कह जाते हैं जो हम महसूस करते हैं। और आज की रात मैं आपको लेके चलूंगी फैज अहमद फैज की दुनिया में, जहाँ मोहब्बत भी है, तड़प भी है और हकीकत भी। लेकिन शुरुआत करते हैं इस गाने से जो अपने शब्दों में यही कहता है, चाहे हालात जैसे भी हो, जब दिल किसी पे आ जाता है तो बस एक ही एहसास हो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा का फोकस ज्यादा रखो।
3: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
4: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
3: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
5: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
0: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी

फ्रॉम द मूवी रहना है तेरे दिल में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और कभी नोटिस किया है, आजकल के रिश्तों में सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है, जल्दी प्यार, जल्दी टूटना, जल्दी आगे बढ़ जाना, लेकिन दिल वो आज भी पुराने जमाने की तरह स्लो है। उसको आज भी वही दर्द, वही मोहब्बत उतनी ही गहराई से महसूस होती है, और जब दिल बोलना चाहता है तो अल्फाज ढूंढ नहीं पाता। तभी तो हमें शायर चाहिए होते हैं, जो हमारे दिल की बात हमारी जबान से पहले कह जाते हैं। और आज इश्क शायराना में आप सुनने वाले हैं फैज अहमद फैज को। फैज की शायरी मोहब्बत भी है और हकीकत भी। एक तरफ वो कहते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। सोचो ये लाइन आज के टाइम में कितनी रिलेटेबल है, क्योंकि आजकल हम सबके पास अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, करियर का प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया के कंपैरिजन वाली लाइफ, इन सब के बीच प्यार अक्सर पीछे छूट जाता है। दिल तो चाहता है सब कुछ पहले जैसा हो, लेकिन जिंदगी बदल चुकी होती है। और फिर फैज हमें एक और तस्वीर दिखाते हैं, गुलों में रंग भरे, बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मतलब हाँ, दर्द है, हकीकत है, लेकिन मोहब्बत फिर भी जरूरी है, क्योंकि वही तो है हमारी ड्राई जिंदगी को फिर से रंग भरने के लिए। तो दोस्तों, आज अगर आप किसी रिश्ते में हो या किसी से दूर हो चुके हो, बस इतना याद रखना, मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है। कभी कभी मोहब्बत वो यादें होती हैं जो आपकी थकी हुई शाम को मुस्कुराहट दे जाती हैं, और यही तो है असली इश्क शायराना, दिल की बात शायर के अल्फाज और हमारी जिंदगी का कनेक्शन। और अब यहाँ पर सुनते हैं बहुत ही बेहतरीन सा गाना। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली की।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन हम?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे सुनो
0: बाय।

गाना है फिल्म परम सुंदरी से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। और ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत सुकून का होता है। जब दिन भर के भागदौड़ से घर पर लौटते हैं तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है। दिन भर की जो थकान है वो सब दूर भाग जाती है। और पता है, मेरे साथ भी यही है। कभी कभी इस टाइम की आरजे होने का अच्छा हिस्सा यही लगता है कि इस वक्त आप और मैं दोनों ही अपनी अपनी दुनिया से थोड़ा सा ब्रेक लेकर बस दिल की बातें कर रहे होते हैं। दिन भर की भाग दौड़, मीटिंग्स, डेडलाइंस, फैमिली टेंशन्स, सबको पीछे छोड़कर ये कुछ पल सिर्फ आपके और मेरे होते हैं। अब असली सवाल ये है कि इन पलों में हम सबसे ज्यादा किसे याद करते हैं? ज्यादातर वही ना जिसके बिना अधूरे लगते हैं, यानी मोहब्बत। लेकिन फैज कहते हैं मोहब्बत ही जिंदगी का सब कुछ नहीं है। चलिए उनके शेर से आपको समझाती हूँ। वो कहते हैं कि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहते और भी हैं वसल की राहत के सिवा। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। आजकल हम सोचते हैं कि प्यार नहीं है तो जिंदगी अधूरी है, लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी की लड़ाइयाँ, दर्द और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी कभी मोहब्बत से भी बड़ी हो जाती है। और फैज यही हमें याद दिलाते हैं कि प्यार जरूरी है लेकिन जिंदगी उससे कहीं बड़ी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मोहब्बत आपके लिए सब कुछ है तो जरा ठहर जाइए, जरा रुक जाइए। जिंदगी की किताब में मोहब्बत बस एक चैप्टर है, पूरी कहानी नहीं। और यही है इश्क शायराना, जहाँ शायर हमें मोहब्बत के साथ साथ जिंदगी का सच भी सिखाते हैं। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ में स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

वैसे ही आशिकी कई बार बगावत भी कर जाती है। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और बहुत ही खास सा सेगमेंट है इश्क शायराना। देखिए, मोहब्बत पर बात हो चुकी है, अब बात करेंगे कुछ यादों पर, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब यादें शुरू हो जाती हैं, किसी की भी यादें। दिन भर की आवाजें, शोर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब जैसे कहीं गायब हो जाते हैं और तभी दिल में वो पुरानी सी यादें दस्तक दे जाती हैं। कभी किसी की मुस्कान की और कभी किसी की नजर की, ऐसे ही पलों को अल्फाज दिए फैज ने। इन्होंने कहा है कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीरानों में चुपके से बाहर आई, जैसे सहमी हुई रूठी हुई सहर आए, जैसे वीरानों में हल्के से हवा आ जाए। क्या कमाल का तस्वुर है। यादों को उन्होंने बहार, सुबह और हवा से कंपेयर किया है, मतलब कोई शख्स अगर याद भी आ जाए तो दिल की वीरानी भी रंगों से भर उठती है। आज की लाइफ में ये एहसास उतना ही सच है। कितनी बार होता है ना, दिन भर सब कुछ ठीक चलता है लेकिन रात को अचानक किसी की याद आकर सब कुछ बदल देती है, जैसे दिल थकान भूलकर फिर से मुस्कुरा उठता है। फैज हमें यही सिखाते हैं कि मोहब्बत का सबसे बड़ा जादू यही है कि वो दूर रहकर भी, याद बनकर भी हमारी जिंदगी में रौनक भर सकता है। तो दोस्तों, आज अगर रात आपको किसी की याद आ रही है तो बस मुस्कुराकर उसे दिल में जगा दीजिए, क्योंकि मोहब्बत हमेशा पास होकर ही नहीं, कभी कभी बस एक याद बनकर भी बहुत गहरी हो जाती है। और यही है इश्क शायराना। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

सोनू निगम की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और फैज की बातें चल रही हैं जो हमारी जिंदगी की कुछ सिचुएशन से बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है, इनकी कुछ ऐसी शायरी, इनकी कुछ ऐसे शेर। और अब एक और सिचुएशन है, ये सिचुएशन है कि जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब हम किसी से बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन दिल भरा होता है, लेकिन जब वो शख्स सामने आता है तो बस खामोशी रह जाती है, लफ्ज दिल में ही अटक जाते हैं। इसी खामोशी को अल्फाज दिए फैज ने, और देखिए इनका ये शेर जो है वो कितना खूबसूरत है और कितना ज्यादा कनेक्ट होता है इस सिचुएशन से कि दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्या कमाल की तसल्ली दे दी है ना इस शेर ने, मतलब चाहे हालात कितने ही मुश्किल से भरे क्यों ना हो लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, गम की शाम कितनी ही लंबी क्यों ना लगे आखिर वो खत्म होनी ही है और उस शाम के बाद एक नई सुबह आनी है। और आज की जिंदगी में ये शेर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। हम सब कभी ना कभी किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं, किसी रिश्ते का टूटना, किसी चीज का प्रेशर, फैमिली की बहुत सारी टेंशन्स, और उस वक्त लगता है कि शायद यही दर्द हमारी पूरी कहानी है। लेकिन फैज हमें याद दिलाते हैं ना ये सिर्फ एक शाम है और ये शाम ढल जाएगी क्योंकि शाम के बाद एक नई सुबह आनी बाकी है। तो यार अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही चल रहा हो ना, एक लंबी सी शाम चल रही हो, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, सुबह जरूर आएगी। और यही आपको सिखाता है इश्क शायराना। फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये AI की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन खैर, जहां AI के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं, वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहाँ ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे, जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहाँ हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं एक टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी, जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोरदा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोरदा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोरदा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई? दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, उनको कैसे प्यार हुआ? इसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली की।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है, और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख, ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है। लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहां जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

बाजिया और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या।

होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गा

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो।

0: बचा के रखो। हैकर्स ऐसा फिशिंग करते हैं जैसे हम फ्री समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेड लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा। रिकैलकुलेटिंग लाइफ, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, एप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।
1: कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

गाना है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और यहाँ पर मैं सेगमेंट ले आई हूँ दिल दिया गल्ला। आपके दिलों की बात आपके दिलों तक पहुंचानी है, और आज का टॉपिक है प्रॉमिस। जब कोई रिश्ते में हम बनते हैं तो बहुत सारे प्रॉमिस कर लिया करते हैं बगैर ये सोचे हुए कि ये प्रॉमिस हम पूरे कर पाएंगे कि नहीं, और ढेरों प्रॉमिस कर लेते हैं और सामने वाला कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता रहता है हमसे कि इतने प्रॉमिस किए हैं तो ज़रूर हम निभाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रॉमिसेस पे, उन वादों पे खरे नहीं उतरते हैं। रिश्ते में सब कुछ बहुत ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है और रिश्ते में केयर बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो वादे किए जाते हैं ना और ये जो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं, इनसे सामने वाला जो है कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो इसीलिए आप वादे कीजिए लेकिन वो वादे जो आप निभा पाएं, और आज इसी बारे में बात होंगी। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। अगला गाना है फिल्म कल हो ना हो से।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी जिलायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

प्रतिभा सिंह की आवाज में है ये गाना कि वो मानता ही नहीं हम सफर तो क्या कीजिए, हर एक दुआ है गर बेअसर तो क्या कीजिए, और नजर की राह में यूं तो कई नजारे हैं पर तुम ही पे जाके जो ठहरे नजर तो क्या कीजिए। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत, और आपने वो गाना सुना है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो जो वादे किए हैं ना किसी से वो निभाने तो पड़ेंगे। और कई लोगों को वादों पर एतबार नहीं होता, जानते हैं ही टूट सकते हैं, फिर भी प्यार में डूबे लोग वादा करने में कोई परहेज नहीं करते, बहुत सारी कस्में खाते हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन वादे जो हैं वो या तो रिश्तों को एक बहुत अच्छी जगह पे ले जा सकते हैं, और वो कौन कौन से वादे हैं जो रिश्तों को खोखला कर देते हैं। वैसे एक वादे के टूटने से होती है रिश्ता टूटने की शुरुआत, और ये स्टडी भी बताती है कि इंसान दिन में 15,000 से ज्यादा शब्द बोलता है। इस दौरान लौटकर आने, फिर मिलने, जिंदगी भर साथ निभाने वाले जैसे तमाम वादे भी किए जाते हैं, लेकिन बात यह भी है कि इन 15,000 शब्दों में से सिर्फ कुछ 100 शब्द लोगों को अगले हफ्ते तक जोड़े रखते हैं। ये बहुत सारे वादे होते हैं कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऑल्दो सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ रहा है इन वादों से, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है कि यार ये वादे टूट ना जाए। तो आज इन्हीं वादों पर बातें हो रही हैं, शो है इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।
2: क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं।

और इसी 90s मैशअप के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत। और यहाँ पर बातें चल रही हैं प्यार में जो वादे किए जाते हैं उनको निभाना कितना जरूरी है यार। यूं तो लोग रिश्ते में चांद तारे तोड़ लाने और मौसम का रुख बदलने तक की बातें कर देते हैं, हालांकि ये सब पॉसिबल नहीं है। ये वादा करने वाला और जिससे वादा किया जा रहा है वो भी जानता है इनको, क्या ऐसा सिर्फ बोलने भर की बातें हैं, ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या होगा जब उन वादों को तोड़ दिया जाए जिसे पूरा करना पॉसिबल है, और सामने वाला आपसे एक होप लगाए बैठा है कि आप इन वादों को जरूर पूरा करेंगे। वैसे अगर एक भी वादा टूटता है ना तो सामने वाले इंसान का दिल टूट जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक वादे के टूटने के बाद एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की हर बात को एक अलग नजर से देखने लगता है कि यार एक प्रॉमिस तो पूरा किया नहीं गया और प्यार निभाएंगे। और आपको ये जो वादे होते हैं ना वो बड़बोलापन बना देते हैं, तो इसीलिए आपको सोच समझ कर वादे करने चाहिए। फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। और यहां पर बातें चल रही हैं प्रॉमिसेस को लेकर। कई बार हम भावनाओं में बहकर ऐसे शब्दों का यूज कर लेते हैं जो वास्तविक जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, और कुछ लोग इसे बहुत नॉर्मल मानते हैं कि बहुत नॉर्मल है, ठीक है वादा कर लिया तो क्या बड़ा कर दिया। लेकिन सामने वाले के दिमाग में ये बातें बस जाती हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब सामने वाला इसे सच मान बैठता है और सामने वाले से ऐसी एक्सपेक्टेशंस करने लगता है। एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन्होंने बताया है कि वादे क्यों टूटते हैं, और इस पर इन्होंने एक बेस्ट रिसर्च स्पीच भी दी है। इसमें इन्होंने वादे टूटने का बहुत मेन रीजन बताया है कि भावनाओं में बहकर हम कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब भी किसी से आप वादा करें तो भावनाओं में बहकर ना करें, वो वादा करें जो एग्जैक्टली आप पूरा कर पाएं, क्योंकि ये सामने वाले इंसान को तोड़ कर रख देता है। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही बेहतरीन सा गाना, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और मैं आज दिल दिया गल्ला में आपसे यही कहूंगी कि वादे कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन वो बचकाने वादे मत कीजिए जिन्हें आप पूरा ना कर पाए। अब वो वादे कीजिए जिसे आप पूरा कर पाए, और सामने वाला अगर आपसे एक्सपेक्ट भी करे तो आप वक्त के साथ अपने वादों पर खरे उतर पाए। वरना लोग आपको ये कह देंगे कि आप अपनी बातों पर नहीं रहते, अपनी बातों को कहकर मुकर जाते हैं। इसीलिए आप कोई भी ऐसा वादा ना करें जो पूरा नहीं हो सकता है। अभी मेरे चलने का वक्त है, मैं मिलूंगी आपसे कल जहां ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: आज शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।
4: ओ मेरो

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं,
2: काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुरैया मारे गिल घुमुरैया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े
1: घुमुरैया मारे गिल घुमुरैया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: था यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की हर खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की हर खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: है जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिए सरकार।
1: थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

ये सारी दुनिया अब अपना घर है, हार न मानेंगे ये खिलाड़ी। चक्के में जाता चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: हाल कैसा है जनाब का,
5: क्या ख्याल है आपका,
4: तुम तो मचल गए.

0: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
1: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी और तुमसे?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: नाना,
0: सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: आप यहाँ आए किस लिए?
1: आपने बुलाया किस लिए?
0: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।
1: ओ जी देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: तुम्हारे हैं।
1: वेरी गुड,
0: तेरे ही सहारे हैं।

0: जरा मुस्कुराई मुस्कुराई
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: Wheels of Life, Wheels of Hope, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझे

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए

0: वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
1: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, I hate water wasting रे। जा जाके टंकी बन।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 एफएम कुछ

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार।
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार।
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, न जाने किसे पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो सुन।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर। बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल को
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता।

हर कोई याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: किया है।
1: आहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कोई हमसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जा।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: पथ ही है बस ऐसा पथ जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: आपको अपने साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव बांट रहा हूँ। श्री राम सुखदास जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था किसी दिन में, और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन का एक अनुभव उसमें कहा था कि हमारे जीवन में, हमारे साधन काल में एक क्षण ऐसा आया जब हमने अपने मन में ये संकल्प किया कि अब हम कोई संकल्प नहीं करेंगे। मन करेगा तो करेगा, पर हम उसके संग नहीं चल देंगे, हम उसके साथ नहीं चलेंगे, चाहे वो संकल्प पारमार्थिक संकल्प ही क्यों ना हो। यहाँ के रसिकों ने कहा है, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सन। स्वामी जी ने कहा चाहे वो पारमार्थिक संकल्प भी क्यों ना हो, हम कोई संकल्प नहीं करेंगे, बस अपने अपने श्री हरि की इच्छा में हमने अपनी सब इच्छा मिला दी, अब राजी हैं हम उसी में और जिसमें तेरी रजा है। और मैं कहता हूँ भक्ति की सबसे सरलतम व्याख्या यही है कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी जाए। हमारे महाप्रभु जी तो रसगान का आरंभ यहीं से करते हैं, जोई जोई प्यारो करे

प्यारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोय भावे। ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है। और स्वामी जी ने आगे लिखा कि भाई अब हमें तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। और जाने उस एक पंक्ति में कैसी शक्ति थी, कैसी ऊर्जा थी कि वो शब्द मेरे भीतर गए, उन शब्दों ने समय आने पर अपना प्रभाव दिखाया। तो भक्ति मुझे लगता है यही है भाई, इसी को समर्पण कहते हैं। भक्ति का प्राण समर्पण है। और यही समर्पण जब अपने मन की कोई इच्छा ना रहे, और मन इच्छा करे तो करने दीजिए, आप मन के पीछे मत चलिए।

अमृत मोह सिंधु की धारा काण दया कर कर्म ही पारा। रोगी वैद्य से कह रहा है कि मुझ पर कृपा करो और मैं डूबता जा रहा हूँ इस मोह सिंधु की धारा में, किसी प्रकार मुझे पार करो। हो अति दीन महा दुख पावत लोग कुटुंब को मुंह ना लावत। क्या आवश्यक है जीवन में अपनी ये झांकी देखना, क्या आवश्यक है कि हम अपनी ऐसी दुर्दशा जीवन में देखें। ये जो समय है ना आपके पास, ये जो जीवन है आपके पास, यही आपकी निधि है, यही आपकी संपत्ति है। कबीर जी ने तो एक बड़ा विस्तृत प्रसंग कहा है, मैं प्रयास करूंगा कल लेकर आऊं कबीर जी की वाणी का वो प्रसंग। वो कहते हैं कि भाई कर सको तो नित्य करो, नित्य नहीं करो तो सप्ताह में करो, नहीं तो एक मास में, नहीं तो एक वर्ष में। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक दिया है जीव को प्रबोध देने के लिए। जो समय है ना, यही आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। महीना में 30 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन जाकर समझिए धाम में रहना है। लेकिन धाम में कैसे रहना है, साधक की भांति रहना है। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे कि तीर्थ का प्रसाद तभी मिलता है, तीर्थ सेवन का फल लाभ तभी है जब आप तप पूर्वक तीर्थ में रहें।